0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਧੂ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ
1: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
2: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

युद्ध बारे अफ्रीका वाले कहंदे हन कि युद्ध दा पहला शिकार सच हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: केड़े मंत्री ने कीता एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब नाल सानू जानू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल ते सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

वक्त की पाबंदी मेहनत अते सिदक दे नाल लोहार दी वर्कशॉप कार दा कारखाना बन सकती है, ठेले दा ट्रक बन सकता है, खोखे वाले दी दुकान बन सकती है। विचार नरेंद्र सिंह कपूर, किताब डूंगियां सिखरां, विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अणकीते गुनाहां दी सजा वर्गी बनी है उम्र अणकीते गुनाहां दी सजा वर्गी केड़ा है दे के आसानू दुआ ये बद दुआ वर्गी जदू अरपी सी तेनों जिंद सी मगदी शुआ वर्गी तेरे सूरज बिना एहो गई नेरी गुफा वर्गी दर्श दिल खिचवें ते चिल मिलांदे रंग सब तेरे मेरे हिस्से च आई पीड़ साहां दी हवा वर्गी कि देखा उसनू हर वारी मेरी दहलीज तो मुड़दा कि देखा उसनू हर वारी मेरी दहलीज तो मुड़दा असाडी नेड़ता हुई न आखी अलविदा वर्गी हां ठाठा मार दे सागर दियां शल्लां च रुड़ चले न तिनके दा सहारा है न उंगली है दिशा वर्गी मेरी तलाश मोह मेरा तबंदे तक सीमत ने उका तो फिर रहा ऐवे शकल धारी खुदा वर्गी मेरी तलाश मोह मेरा तबंदे तक सीमत ने उका तो फिर रहा ऐवे शकल धारी खुदा वर्गी
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे मन चाहे असी गीत सुनावांगे हर मन रेडियो जी।

0: मेरा चूत चढ़ जाए पच्चड़ वांगू, मेरा चूत चढ़ जाए पच्चड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लैके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दियां खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुणोगे तुसी आहा।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

भी चाहो सुनो हिट गीत हरमन रेडियो है तुहाडी सेवा विच। पुराने गीतां दी मिठास नवे गीतां दी धुन हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन। केड़े केड़े देशां विच की वापर रहा है हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला।

0: सत श्री अकाल जी। ए हरमन रेडियो है, हरमन रेडियो का तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली ऐप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: तुसी मनो जाना मनो पैसा बोलदा वीरे, जदों जेब विच होवे खून खौलदा वीरे, एह नच्चे ना बसंत।

मेहमान बारे अरब दी कहावत है कि चंगी खातरदारी करन वाले दा प्राहुणा ही खातरदारी करना सिखदा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी।

0: अपनी सतिंदर सत्ती पंजाबी जुबान पंजाबी मां बोली की सेवा करता होया तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो।
1: मोहम्मद सदीक रणजीत कौर मोहम्मद रफी शिंदा दिलशाद आते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दोपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

भी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

0: मशीन हरमन रेडियो हरमन रेडियो
1: सत श्री अकाल जी। मैं हाँ अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया के हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़दे हन अते आला दर्जे की पेशकारी का आनंद माणदे हन। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रेजेंटर मुफ्त सेवा निभाउंदे हन। तुसी भी साडी मदद कर सकदे हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो अते साडियां अपनियां आईफोन अते एंड्रॉयड दीयां एप्लीकेशंस एप स्टोर तो डाउनलोड करके उस विच सानू सुनो। तुहानू रेडियो दे नाल अखबार, पॉडकास्ट, वधिया वीडियो, लेख, दरबार साहिब अते होर गुरधामां दा लाइव कीर्तन सुनन अते देखण नू मिलेगा। ऐप विचों ही सीधा सुनेहा कल सकोगे। अज ही साडियां एप्स इंस्टॉल करो। धन्यवाद।

0: आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी थानू चाहिदा सब इथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवा, चादरा, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लेता है जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी? वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा। ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा। ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाले स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके।

0: आमी मुलाजमों दसो इनू की सजा दिती जाए।
1: अजकल जेड़े बढ़ते राजे वांग करछियां जानगे मांजे, इज्जत बेगानी उत्ते जेड़े नजर माड़ियां चुकणगे।
2: मां के मुंडियां हुण कसा कोणे नू ना झाड़ियो, नहीं तो पोटू शाह जी कुटणगे।
3: पोटू शाह जी हुण तुसी दरबार नू करो समाप्त, क्योंकि तुहानू पता है कि बेकार वन चैनल ते द ग्रेट एडियट लफड़ा चैलेंज प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ते सानू उस प्रोग्राम तो आया कार्ड, आपा दोनों ने उथे जज बन के जाना ही।
0: आओ फिर आपा जज बन के चलदे हां।
4: हेलो, मैं हां बुरी जात ते प्रोग्राम कर रही हां स्टार्ट द ग्रेट एडियट लफड़ा चैलेंज। सो इस प्रोग्राम दे जज ने गिद्दू साहब जी ते वेटर कुमन जी। तो हुण जिस पार्टिसिपेंट नूं मैं पेश करन जा रही हां, उस दे कोल ना ता गड्डी है ते ना ही घोड़ा, ते बठिंडे तो आ रिया गायक फेरा तोड़ा।
5: के हाल है चेला जी?
6: ओ गुरु, तू सानू चेला कह दिता।
5: मैं क्या इस तो पहला तुसी मैनू गुरु कहो, मैं ही तुहानू चेला कह देना। पर बेटर घुमण जी, जे कोई मैनू पूछे साहब तो ज्यादा गुरु के दे आ, तो मैं कहना गिद्दू साहब दे आ।
3: ओ पाजी दे गुरु ज्यादा किदा होए?
5: ओ मैं तुहानू दसदा जी, गिद्दू साहब जिद को गोल गप्पे खान ते ओनू कह देंदे आ, ओ गुरु तेरा पानी बड़ा स्वाद है। जे किसे को बूट पालिश करान ते पालिश आले नू कह देंदे आ, ओ गुरु तेरी पालिश बड़ी लाजवाब है।
6: ओ बस कर गुरु।
5: तुसी ते हसनो हटना ने, हुण मैं ही हो जाना शुरू। गिद्दू साहब सोचदे होणे आ, एक ऐसा कलाकार है कि लफड़ा चैलेंज साइकिल ते ही आ गया। गिद्दू साहब मैं तुहानू दसदा, प्रोग्रामा दे मंदे पै गए आ, किस्तां देने होईआं ते गड्डियां फाइनेंसर लै गए, गाने स्टेजां ते साडे वजदे आ, ते ओदा गिद्दे भंगड़े आलिआं दा चर्चा, साइकिल असीं इस करके रखिआ कि इहदा कड़ा कोई खर्चा। बेटर घुमण जी, मैं ते एडा महान गायक आ, ते जदों मैं गाना लोकी खड़े हो के
6: ओ गुरु तालियां बजांदे आ।
5: तालियां नहीं बजांदे, अपने घर नूं चले जांदे। एक बारी मैनू किसे ने कहा तेरा दफ्तर किथे है, मैं कहा जद प्रोग्राम है नहीं ते दफ्तर किथे होना। बेटर घुमण जी, गायक बनने लई बड़ा रियाज करना पैंदा। मैं एक बारी रियाज करदा पिया ते मेरा गवांडी आके कहिंदा किन्ने बजे आवां। एक बारी मैं प्रोग्राम करदा पिया ते शराबी शराब पी के पैसे सुटन लग पे, ते मेरे शिगिरदा ने पैसे ते चकने सी, नाले थल्यो घा भी पुटन लग पे। ते जदो प्रोग्राम खत्म होया, मैं अपने शिगिरदा नु पुछया किने पैसे होए आ, कहंदे जी पैसे ते 400 रुपया होया, पर घा 2-4 किलो हो गया।
6: ओ गुरु, छड रहन ते छेड़ न तरजा नू, तेरे तो गाया नहीं जाना, सुर बहुते लगाने पेंदे ने, ते तो एक भी लगाया नहीं जाना।
4: सो एसी बठिंडे शेर तो साडा गायक फेड़ा तोड़ा।
7: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
8: 24 घंटे 7 दिन।
9: मॉर्निंग।
10: इस गीत विच हिंसक अते मार चाट वाला विषय है, जे एतराज है ता सरोते थोड़े समय लई आवाज धीमी कर सकते हैं।

Shed Nexus. रोजाना दोपहरे सिवनी समय एक तो दो बजे तक असी सुनांगे खबरां अज दा इतिहास हासरस कमेडी अते टॉप गीत।

विच होर एक बाऊ आया मुछा ना दाड़ी बई रब भलेखा खा जाए जे ओ बन लै साड़ी ओनू भी विच बहा के उन्हें बटन दबाया।

0: थोड़ा समारोह हसण लई हरमन रेडियो लेके आया है, लेके आया है कॉमेडी आवर गीत ते हासे ते हासे।
1: लो भी मित्रो, अजकल जिन्ने भी रिश्ते नाते ने झूठ से खड़े ने। सच एक परमात्मा का नाम, जेड़ा उसनु मानदा ओदे लई सच है, जेड़ा नहीं मानदा ओदे लई ड्रामा, क्योंकि रब एक दुनिया क्रैक। मैं भी मित्रों एक ड्रामा, चलो जी लाल कमल जी करिए ड्रामा।

0: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गो ते भाभीओ देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबीओ प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियो झगड़े छड़ के दो मिनट हसो
1: जट्टा के मुंडे साढ़े ना लै के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
0: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गों ते भाभीओ देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबीओ प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियो झगड़े छड़ के दो मिनट हसो
1: जट्टा के मुंडे साढ़े ना लै के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
3: यार पोटू शाह ओए कल तेरे मैं विआह दी मूवी देखी
4: यार तेनू मैं दसदा तकाला नू जदों डोली तुरन लगी मेरिया सालियां मैनू घेर के खड़ गईयां ते कहंदियां
3: ना फिर ते तो कुछ ना सरिया
4: ले मैं खड़े ने अपने दिमाग दे विच छंद कड़िया मैं कह सुनो भी छंद परागे आइए जाइए छंद परागे रुपया भैन थोड़ी नो काम नहीं लाउंदे दाच दे दे भैया
5: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो
6: मुश्किल ए भी है कुगी साहब जेड़ा मेहनत नाल पढ़दा भी है ओनू नौकरी नहीं मिलदी क्योंकि साडा देश गरीबी बेरोजगारी अनपढ़ता ऊंच नीच दी दलदल विच तसदा ही जा रहा है कई देश साडे तो बाद विच पैदा होए ने ते साडे तो किन्ने अगे निकल गए ने
7: असी लोग वेला नहीं ना विचारदे दीपक राजा जी सही टाइम ते गलत फैसले लैने लै एक मिसाल सुन
6: की
7: 35,000 फुट दी ऊंचाई ते उड़दा एक जहाज क्रैश हो गया सारियां सवारियां समेत स्टाफ रब नू प्यारियां हो गई
6: अच्छा
7: बस तीन बंदे बजे एक अपना पंजाबी भाऊ सी एक जापानी ते एक इंग्लैंड दा छतरियां खोलियां थले आके डिगे
6: अच्छा
7: थले आके वेख्या के टापू च डिगे
6: अच्छा
7: चारे पासे दूर दूर तक पानी निकलन दा रस्ता ही कोई नहीं
6: ओए होए होए
7: हुण तीन चार दिन ते किस तरीके लंघे उन्हां दे औखे सौखे जापानी दा दिल उदास जिहा हो गया
6: अच्छा
7: ओ समाधी ला के बह गया पंजा सत्तां दिनां बाद ओहदा ईष्ट प्रगट होया
6: अच्छा
7: कहिंदा बोलो बेटा की चाहिदा मंगो जो मंगणा
6: फिर
7: ओ कहिंदा बाबा जी मंगणा तां होर कुछ नहीं बस मैनू तां मेरे बच्चियां कोल मेरे वतन लै चलो मेरे घर लै चलो मेरे लोकां च लै चलो
6: अच्छा
7: बाबा जी ने मारिया मंत्र नाल ही अगला अपने घर पहुंच गया बच्चियां च इंग्लैंड आले नू भी स्कीम सोझ गई
6: कि
7: ओ भी समाधि ला के बह गया
6: अच्छा
7: ते 5-7 दिनां बाद ओहदे भी बाबा जी प्रगट होए
6: अच्छा
7: कहिंदे मंगो बेटा की मंगणा बाबे बहुत खुश है ओ कहिंदा बाबा जी कुछ नहीं चाहिदा दुनिया दी कोई चीज नहीं चाहिदी मैनू तां बस मेरे देश लै चलो मेरे बच्चियां च मेरे लोकां च लै चलो
6: बहुत अच्छे
7: ओहदे बाबा जी ने भी मारिया मंत्र नाल ही अगला उथों गायब 2 दिन बाद फिर एहो स्कीम वरती पंजाबी भाऊ ने
6: कि
7: बह गए फिर समाधे ला के 5-7 दिन की भगती तो बाद बाबा जी प्रगट होए बोल बई पुत्र की चाहिदा फिर बाबे बड़े परेशान ना हो तेरे तो ओ कहिंदा बाबा जी आपां नू होर कुछ नहीं जे चाहिदा एवें बोर हो डे आ ओ दोवें भूतनी ते फेर वापस लै आओ
8: हसण दा समा है हरमन रेडियो ते हासियां दी बारिश

0: दुगनू यार हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई।
1: बिल्कुल
0: की बनूगा यार अपने मुल्क का?
1: बनना की है यार, मैं भी कल यही सोच रहा सी कि घट्टो घट मैं तो अपना योगदान पाव आबादी घटाने च।
0: बंदे मारेगा?
1: नहीं नहीं बंदे नहीं मारने, कल मैं सोचा कि अपने मुल्क की आबादी बहुत बढ़ गई इसलिए आत्महत्या करिए।
0: तो फिर गड्डी थले आ जांदा?
1: मैं सोचा गड्डियां कई बार लेट हो जांदियां ने, किसी नवे तरीके नाल मरिए।
0: तो फिर खूह छाल मार के मर जांदा?
1: मैं सोचा फिर भी इतनी मॉडर्न दुनिया छड के जाना है, खूह छाल मार के मरिया ता की मरिया, लोग कहणगे ता तरीका 50 साल पुराना है।
0: ओ यार फिर तू जहर खा लेनी सी, जहर ता बंदे नु छड़दी नहीं।
1: पर मैनू इंडिया दी जहर ते यकीन नहीं, कई बार बंदे नु चढ़दी नहीं।
0: ओहो यार फिर तू पुलिस दी मदद ले लंदा?
1: मैं सोचा कानू इलाके दा अमन कानून भंग करना है, पुलिस कोले होर बथेरे वड्डे वड्डे काम ने, एवें छोटे जे काम पिछे नू कानू तंग करना
0: है। कोई फैसला कीता भी कि नहीं? फिर
1: मैं सोचा जांदे जांदे कोई नवा काम करांगे, आगरे जाके ताजमहल तो छाल मार के मरांगे। मैं आगरे गया, ताजमहल ते चढ़िया, छाल मारन लगे सी कि एक बंदे ने पिछों मेरा हाथ फड़िया।
0: की कहिंदा ओहो?
1: ओ कहिंदा ए गल गलत है, जे छाल मारनी है पिछे लाइन च लगो, मैं 26 जनवरी दा खड़ा, अज 15 अगस्त है।
0: अच्छा अच्छा एदा मतलब तू मरना कैंसल करता?
1: कैंसल नहीं कीता, मैनू पता लग्या कि लाइन च लगन वास्ते भी पर्ची कटाउणी पैंदी है। आ हाल है इस मुल्क दा यार, मरन वास्ते भी बुकिंग करानी पैंदी है।
2: अर्बन रेडियो, दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी। पंजाबी
3: खावांगे जिस दिन अभी आपका समर संतोष।

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: पेट बारे भारत की कहावत है कि यह सिर्फ कुब्बा ही जानता है कि उसने केड़े पासे सोना है।

हार जित बारे अफरीका की कहावत है कि जित दे सो बाप हुंदे हन अते हार यतीम हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

बिजनेस सेट लाइफ लौंग मुंडे दा रहिंदी आ खबर सन बन्ने चन्ने दी जड़े ना दवाई साढ़े हाथ पन्ने दी गब्बरू दी एक दाया चढ़ाई नखरो फिल्मां च जिवें सी राजेश खन्ने दी।

0: 24 घंटे 7 दिन।
1: एक अमरीकी कहावत अनुसार अधखड़ उम्र की हुंदी है। अधखड़ उम्र विच बंदे नूं चंगी लगन वाली हर गल जां तां गैर कानूनी हुंदी है, जां अनैतिक, जां फिर मोटापा बधाउण वाली। चंगे विचारां लई जुड़े रहो।

जी आया नू प्रोग्राम दे विच आप सारे नू सत श्री अकाल ते हार्दिक स्वागत। दोस्तों अज गलबात करांगे 15 अक्टूबर नाल संबंधित सिख इतिहास पंजाब दी तवारीख अते देश दुनिया दी अहम घटनावां दे बारे। 15 अक्टूबर 1981 दा जिक्र सब तो पहला है जद बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले फिरोजपुर जेल विचों रिहा होए सी। दरअसल सितंबर 1981 विच लाला जगत नारायण कतल केस विच ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। एक मीटिंग अकाली दल वालों की गई जिस विच ऐलान किया गया जो कि 27 सितंबर नू गुरुद्वारा आलमगीर विखे हुई सी। उहदे विच ऐलान होया कि जेकर पिंडरां वालियां नू 17 अक्टूबर तक रिहा ना किया गया तां अकाली दल 18 अक्टूबर 1981 तों सिविल नाफरमानी की लहर शुरू कर देवेगा। इहनू सामने रख के 13-14 अक्टूबर नू इंदिरा गांधी, दरबारा सिंह, सेंट्रल होम मिनिस्टर ते कुछ होर वड्डे सरकारी थम नवी दिल्ली विच इकट्ठे हुए। इस समय सारे कांग्रसियां ने इंदिरा नूं वार्निंग दित्ती कि पंजाब नूं अग लगन तों बचाउण वास्ते पिंडरां वालियां नूं रिहा करना पएगा। आखिर इस मीटिंग दे विच फैसला होया कि पिंडरां वाले अगे गोडे टेक दिते जाण। इस तों एक दिन मगरों ही 15 अक्टूबर 1981 दे दिन फिरोजपुर जेल विचों पिंडरां वालियां नूं रिहा किया गया सी। साल 1982 जद धर्म युद्ध मोर्चे दौरान अकालियां दियां बिना शर्त रिहाइयां शुरू हुईयां। धर्म युद्ध मोर्चे दे संबंध विच इस वेले तक जेलां विच 25,000 तों ज्यादा सिख कैद सी ते सरकार दी हालत बहुत माड़ी। अखीर 15 अक्टूबर 1982 दे दिन इंदिरा गांधी ने सारे सिखां दी रिहाई दा ऐलान किया पर कुछ जेलां विचों अकालियां ने बाहर आउण तों ना कर दित्ती। अकाली दल नूं हुक्म करके उन्हां नूं बाहर सद्दणा पिया। साल 1985 जद अमृतसर जेल विच 11 सिखां वल्लों भुख हड़ताल कीती गई सी। दरअसल राजीव गांधी ने सुरजीत बरनाले नूं इसे वास्ते अकाली दल दा प्रधान ते चीफ मिनिस्टर बनाया सी तां जो उहदे नां ते खाड़कुआं, खालिस्तान, पिंडरां वाला वगैरा दे खिलाफ प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी जा सके। शुरू विच बरनाले दे दिखावे वल्लों पंथक मंगां बारे इक अद्धा बयान दित्ता पर इह सब कागजी कारवाई सी। उस वक्त 2,000 तों ज्यादा बेगुनाह सिख टाडा केसा हेठ पंजाब दीआं जेलां विच सी। 500 दे करीब हरियाणे विच, 400 दे करीब जयपुर, जोधपुर विच ते 500 दे करीब होर जेलां विच सी। पंजाब विच कैद सिखां बारे बरनाला ने जस्टिस अजीत सिंह बैंस दी प्रधानगी हेठ एक सब कमेटी बनाई। इस कमेटी विच भाजपा दा सीनियर आगू लाल चंद सबरवाल भी शामिल सी। इस कमेटी ने बरनाले नूं सिफारिश कीती कि सारे बेगुनाह सिख रिहा कीते जाण पर बरनाले ने सिर्फ 26 सिख रिहा कीते। होर तां होर उस वेले इन्हां 2,000 सिखां विचों 224 बेगुनाह सिख पंजाब दीआं जेलां विच कैद ही नहीं नजरबंद भी सन। बरनाले ने होर सैकड़े सिख नौजवान गिरफ्तार करके जेलां विच सुट्टे। जेलां विच सिख नौजवानां नूं बहुत सारियां मुढ़लियां कानूनी सहूलतां भी हासिल नहीं सी। इस ते 15 अक्टूबर नूं अमृतसर जेल विच बंद सिखां वल्लों विचों 11 जणियां ने 3 दिन दी भुख हड़ताल कीती सी। जिक्र 1999 दा आया जदों महल सिंह सैदों नकली मुकाबले विच शहीद होए सी। साल 1992 जथेदार तलविंदर सिंह परमार कनेडा नूं नकली मुकाबले विच शहीद किया गया। साल 2014 दरबार साहिब दी परिक्रमा विचों नकली बंसावली वाली सिल उतारी गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 15 अक्टूबर 2014 दे दिन दरबार साहिब दी परिक्रमा दे विच महाराजा शेर सिंह दी नकली बंसावली वाली सिल उतार दित्ती। विद्वानां ने कई वार श्रोमणी कमेटी तों इहनूं हटाउण दी मंग कीती गई सी पर इह उदों तक ना होया जद तक विद्वान सिंह नां दे इक सिख ने 7 मार्च 2014 दे दिन इस संबंधी गुरुद्वारा जुडिशियल कमिश्नर विच केस ना कर दित्ता। दरअसल इह सिल किसी परिवार ने अपने आप नूं रणजीत सिंह नाल संबंधित साबित करन वास्ते किसी कार सेवा दे किसी साध नूं पैसा दे के लगवाई सी। अखीर जद कमिशन कोल 1852 दा माल महकमे दा मार्च 2014 दे दिन इस संबंधी गुरुद्वारा जुडिशियल कमिश्नर विच केस ना कर दिता। दरअसल इह सिल किसी परिवार ने अपने आप नूं रणजीत सिंह नाल संबंधित साबित करन वास्ते किसी कार सेवा दे किसी साध नूं
पैसा दे के लगवाए सी। अखीर जद कमीशन कोल 1852 दा माल महकमे दा रिकॉर्ड पेश किया गया तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

0: जिक्र है 1592 इटली फ्रांस स्पेन ते पुर्तगाल ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी नवा कौमांतरी कैलेंडर अपना लिया ते तारीख नूं 10 दिन अग्गे कर दिता यानी अगला दिन 26 अक्तूबर हो गया। साल 1860 11 साल दे एक मुंडे ग्रेस बैडल ने अमरीकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन नूं खत लिखिया कि जे ओ लिंकन दाढ़ी रख लवे तो ओ वधेरे सोहना लगेगा। इस मगरों लिंकन ने दाढ़ी कटनी बंद कर दिती सी। साल 1910 गामा पहलवान नूं संसार हैवीवेट चैंपियनशिप दक्षण एशिया विच जेतू घोषित किया गया सी। और साल 1946 नाजी जर्मनी विच खुफिया पुलिस गेस्टापो दे मुखी हरमन गोरिंग ने फांसी तो बचन वास्ते एक दिन पहला जहर पी के खुदकुशी कर ली सी। साल 1850 ब्रिटिश अधिकारी अंडेमान अते निकोबार टापू दा मुख कमिश्नर अते मानव विज्ञानी आर सी टैंपल दा जन्म होया सी। साल 1922 पंजाबी लेखक रजिंदर सिंह बल दा जन्म होया सी। साल 1927 भारतीय एथलीट प्रदुमन सिंह बराड़ दा जन्म होया सी। साल 1931 भारत दे विज्ञानी अते राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम दा जन्म होया सी। साल 1948 पंजाबी गायिका जगमोहन कौर दा जन्म होया सी। साल 1949 भारतीय पत्रकार अते मीडिया दी शख्सियत प्रणय राय दा जन्म होया सी। साल 1979 पाकिस्तानी अमरीकी संगीतकार ते रैपर बोहेमिया दा जन्म होया सी। साल 1943 भारत दे आजादी सेनापति अते क्रांतिकारी साहित्यकार बाबा कांची राम दा देहांत होया सी। साल 1999 भारतीय इनकलाबी अते एक आजादी घुलाटन दुर्गावती देवी दा जन्म होया सी। साल 2011 लहिंदे पंजाब दे लेखक नाटककार अते समालोचक मुहम्मद मनशा याद दा देहांत होया सी। सो घटनावां ने जिन्हां दा संबंध अज 15 अक्तूबर नाल खास तौर ते जुड़िया होया आ। धन्नवाद।
1: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई तुसी साडे नाल संपर्क कर सकदे हो।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
1: अपनी समर्था नालों वधेरे देना मेहरबानी हुंदी है पर अपनी लोड़ नालों घट लेना निम्रता खवांदी है। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी जज्बात पंजाबी।

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, कर खाण नू नहीं मां प्रीहण गई।
1: कर विच ता अपने खाण जोगा भी नहीं ते कहिंदा है, मेरी मां पिंड विच सीरा वंडन गई है। असलियत दे विरुद्ध फड़ा मारन वाले लई एह अखाण ठुकांदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: दोस्ती दोस्ती मोह की शिखर अपनत्व दे मग दे एहसास दा नाम है। दोस्ती मना दे अंदर पलदे सच्चे साथ नूं व्याख्या जा सकदा है। दोस्ती मनुखी रिश्तियां दा ओह फुल है जिहदे वर्गा दुनिया विच होर कोई फुल नहीं, जिहदे वर्गी होर कोई सुगंधी नहीं। विचार कह शरीर किताब समय नाल।

यात्रा बारे सियाने कहंदे हन कि कर बैठे बुड्ढे नालों यात्रा करके मुड़े बच्चे नूं ज्यादा कुछ पता हुंदा है। सोने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: They know my name, Gorilla Howdy. Down below.
1: जमाने बदल गए, अंदाज बदल गए, कुछ तो है जो आज भी ठहरिया होया, जिदे नाल मैनू रोजाना समय दर समय महसूस हुंदा अपनापन, पुराने गीतां दी खुशबू, सत्थां दी महक, जिंदगी दा जशन, खूबसूरत कविता, जेठ दियां रुत्तां, सौण दे छराटे, पतझड़ दे एहसास, कुछ तां है जो महसूस हुंदा। भुल्लियां विसरियां कहानियां, वेड़ियां दी सांझ, तारियां नाल सजिया होया अंबरां दा थाल, वाडी दा मौसम, झोनिया दी टोलां ते पैंदी थाप, बोर्ड ते पूलियां दे उत्ते बिस्तरा विछा राखी करना, कुछ तां है जो अजे भी बाकी है। रावी दे पानी, सतलुज दी महक, प्रभात दी पानी, तरकाला दी रहरास, रात दियां बातां, कुछ तां है जो अज भी गुनगुना लईदा। ये अपनापन, ये सांझ, विदेशां च बैठे मेरे वर्गे लई, मेरियां यादां च पंजाब अज भी ज्यों दा त्यों है। बेशक तत्तियां हवावां, कालियां रातां हनेर करती भी है, पर कुछ तां है जो अज भी मेरा, मेरे होण दा, मेरे तक पहुंचदा। सत्थां दी सांझी आवाज, हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग। उमर वारे रूस वाले कहंदे हन कि चढ़दा पत्ता आदमी दे कन्ना विच कुछ फुसफुसा रहा हुंदा है। विद्या

अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी। युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि जेड़ा युद्ध लई काली करदा है उसनू ए नहीं पता हुंदा कि युद्ध मौत दा वसीला हुंदी है।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे सत्ते दिन।
2: आए नी निहंग बोहे खोल दे निशंग।
3: इस अखाण विच निहंग सिंगां दे चरित्र दी शलांगा कीती गई है कि ओ अपनी लोड़ तों वद किसे चीज वल नहीं वेखदे।

0: पहरावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। एक बेले विच दो शेर नहीं रह सकदे।
1: इसदा मतलब है कि दो इको जिहे तकड़े डाडे बंदे एक थां रल मिलके गुजारा नहीं कर सकते।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने आ एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना बहुत थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी थानू चाहिए सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटो, चादरा, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा। ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: हरमन रेडियो 24/7
4: एलिकट्स तर वेले अनुसार इतिहास तस्वीरां दी उस गैलरी वांग हुंदा है जिथे असली तस्वीरां घट अते नकली तस्वीरां ज्यादा हुंदियां हन। चंगे विचारां ले जुड़े रहो अर्बन रेडियो दे नाल।

0: 24 घंटे 7 दिन।
1: मुस्कुराहट बारे अमरीका दी कहावत है कि एक मुस्कुराहट 1000 शब्दां तों वध कीमती हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: 24/7.
1: सब तो लचकदार साडा मन हुंदा है। अज ये किसी दे चेहरे दा दिल भी बर्दाश्त नहीं करता, कल पहाड़ भी नजरअंदाज कर देवेगा। विचार नरेंद्र सिंह कपूर, किताब माला मणके। विचारां दे जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सत श्री अकाल दोस्तो, मैं गगन मसौन हुण हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी दियां प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर वधेरे रचनावां सुनन अते फीडबैक देण लई मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी क्रिएशंस सबसक्राइब करना ना भुलना।
1: Yeah.

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: विरोध नाल दोवें धिरां चकन्नियां रहिंदियां ने, मुकाबले नाल दोवें धिरां विकास करदियां ने, झगड़े नाल दोवें धिरां निगरदियां ने, ते सहयोग नाल दोवें धिरां सफल हुंदियां ने। जेड़ा ढंग ठीक लगे अपना लेना। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।
2: सज्जणा दी फरमाइश ते अमन हेर दे म्यूजिक दे विच मैं दोबारा अपना गीत पेश करन जा रहा। मित्रां दी मोटर ते कच्ची दी गलासी खड़के।
3: Yeah, back again myself, MC Special alongside K Smuck and Amon here, bringing you

0: is too sick.
1: एक चंगे बेले या सुख विच साथी उस बैंकर वांग हुंदा है जेड़ा तुहानू धुप वेले ता छतरी दे दिंदा है पर जिवें ही मीह शुरू हुंदा है एकदम छतरी वापस ले लैंदा है। अजिहे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हरमन रेडियो
1: रेडियो
0: कमाल बा कमाल।
2: न्यूजीलैंड की कहावत अनुसार दिन नू फड़ा मार लवो पर रात नू निमरता ही चंगी हुंदी है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: Harman Radio
1: 24/7
2: अपना रखे पराया तके, उस नु मिलन दरगाह तो तके।
3: इस अखाण विच उस आदमी नु फिटकारिया गया है जो दूजे दी चीज उत्ते अख रखदा है।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, मंगी सी हेठ नू मिल गई उत्ते नू।
1: जद जतन ता करिए कोई वर्तन योग शै लई, अते अगो मिल जावे ओ जिस दा उल्टा पार चुकना पवे अते खेचल चलनी पवे, ता अखाण कहंदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे सत्ते दे।
2: फौजां बारे सियाणे कहिंदे हन कि जिथे फौजां तैनात हुंदियां हन उथे सूलां ते कंडियाली झाड़ियां दी फसल पैदा हुंदी है। सोहणे विचारां लई सुणदे रहो।

0: इस उम्र थानू केड़ा हमदम मिल गया
1: भगवान ने मैं उस हमदम नहीं गल करता मैं करता हरमन रेडियो दी
0: हरमन रेडियो
1: हरमन रेडियो जेड़ा 24 घंटे चलता आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो
2: हरमन रेडियो।

0: सुनाओते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: रीति रिवाज बारे सियाने कहंदे हन कि नवी थां दे रीति रिवाज मन्नो, जे नहीं ता उत्थों भज्जण दी करो। विद्या विचारी ता परोपकारी। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिया राम। गुरु प्यारियो सिडनी समय अनुसार शाम दे पांच बज चुके ने, ता आओ दुनिया भर विच वास्ते पंजाबियां दे हरमन प्यारे हरमन रेडियो दी मार्फत सरवण करदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब तों बख्शिश होए अज दे हुक्मनामे।

0: साहब वाहे गुरु जी की फतेह।
1: गुर सिंहासन ते सुभाईमान प्रकाशमान शतर चवर तखत दे मालक सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान हुंदिया आए अज दे पावन हुक्म नूं इस समय आप जी गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब जी दे इस पावन दर तों शरवण करन लई ते शब्द दे विचार सांझ प्राप्त करन लई साहिब जी दे पावन चरण कमलां विच बड़े अदब नाल बड़े सत्कार पावना श्रद्धा ते प्यार नाल मेरे मालक जी दे दर ते आके मस्तक चुकिया पावन दर ते आके इस संगत विच बैठन दा सुभाग मेरे मालक जी ने आप बख्शिश कीता। आओ साहिब दी रहमत ते असीस प्राप्त करिए जो सरबंस जगत नू सतगुरु जी दा ए पावन संदेश उपदेश और आदेश ए शरवण करन दी अंदर भावना पक्की होवे ते पावन शब्द दे उपदेश नू शरवण करदिया करदिया सुरत शब्द दे विचार विच समो जाए ए मेरे साहिब आप कृपा करन शब्द विचार करन दी ते विचारे हुए शब्द नू हिरदे विच टकावन दी समर्थ मेरे पातशाह जी आप बख्शिश करन जी। आओ अज दे पावन हुक्म जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 690 अंक दे सुभाईमान ने साहिब रहमत करन शब्द विचार शरवण करन दा अंदर टिकाओ सहज ते श्रद्धा बनी रहे। आओ साहिब दी सीस लईए शब्द विचार आरंभ करन तों पहला एक बारी अपने भले लई ते सरब

0: तनासरी राग विच शब्द है। शब्द की बंदिश छंत रूप विच मेरे साहब जी की है। अते ताल दे संबंध विच पहले घर विच गावन की हिदायत की है। राग ते ताल दोहां दा समेल कीर्तन का रूप धारण करदा है। मेरे साहब जी शब्द की आरंभता विच उस करते का आराधन करदे ओ एक है, अनेकता विच समाया है पर एक है। ओंकार क्योंकि निरंकार आकार आप बनाया, तमाम आकार चाहे जलचर ने चाहे थलचर ने चाहे नभचर, कुछ आकाश विच उड़न वाले नभचर, 42 लाख जी जलमय होते जलचर ते कुछ धरती ते चलन वाले थलचर, तमाम आकारों नू करता आप बनांदा है ते अनेकता दे कारण विच अपनी शक्ति अपनी जोत टिका के आकारों नू टिकाई रखदा है। पर कमाल दी गल ए है अनेकता विच रहिंदिया होइया आप फिर भी एक है। उसका अनुभव करन लई जानन लई सतगुर प्रसाद गुरु की कृपा की लोड़ है। गुरु कोल आया ही रब का पता चलता। गुरु की कृपा रहमत हो जाए तो जीव ते परमात्मा का मिलन होता है। साहब की रहमत बन आए। आओ शब्द की आरंभता मेरे साहब जी धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान पातशाह जिन्हां दे दर तों दिन रात बरकत वरतदी है। ए ओ दर है जिथे दिन रात पेट भरन दा भोजन भी मिलता है, जिथे दिन रात अंदर दी सुरत नूं समावन दे लई शब्द कीर्तन दा भजन भी मिलता है। इत्थे ओ दर है जिथे दुनिया भर में जिस नूं कोई ना पुछदा होवे मेरे साहब दे दर ते आके मान भी मिलता है, इस दर ते आके तान भी मिलता है, इस दर ते आके संसार दीयां बरकतां भी मिलदियां है, इस दर ते आके रुलियां फिरदियां नूं मेरे साहब गले ला लैंदे ने। आओ उस धन गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन दर दी बरकत शब्द रूप विच अंदर संभालिए जी।
1: हर जीओ कृपा करे ता नाम त्याईया जीओ।
0: मेरे वाहिगुरु जीओ अगर आप कृपा करो रहमत करो ता अंदर सुरत विच नाम त्याईया जीओ। बोलना सुभाविक है पर अंदर हिरदे नाल त्यावना ये बहुत उची बख्शिश है। मेरे मालिक दी बहुत उची रहमत जिस दी झोली विच पै जाए ते फिर अंदर नाम त्याया जांदा है। वो जिहड़ा हिरदा हर वेले कुछ ना कुछ चितवना करदा सी वो हुण चिंतन करन लग जांदा है। वो अंदर हर वेले वाहिगुरु जी का नाम आराधन करदा है। इस विच शक नहीं है जिहड़ी गल अंदर दिल विच बैठ जाए वो रोकियां भी नहीं रुकदी ते जे अंदर वाहिगुरु जी का नाम हिरदे विच बैठ जाए ते फिर नाम त्याया जांदा है। मेरे साहब जी जे आप कृपा करो ता
1: सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाईया जीओ।
0: रब दी रहमत होवे ते सतगुरु मिलदे ने। असि जिन्ने भी आना बहुत वड्डियां भागां वाले हां, सानू ओ सतगुरु मिले ने जो साडा जीवन दा सहारा ने। तू सबनी थाई जिथे हों जाई साचा सिरजन आरजियो। गल थोड़ी ध्यान च रखियो जे रब हर वेले साडे नाल नाल है ते सतगुरु दी भी बख्शिश ऐसी है। गुर मेरे संग सदा है नाले ते ऐसे सतगुरु दा मिलन रब दी रहमत नाल हुंदा है ते फिर अंदर रब्बी प्यार पैदा हुंदा है। सतगुर मिले सुभाए अंदर रब्बी प्यार सहज आपा टिक जांदा है। बहुत वड्डी बख्शिश है, रब की कृपा हो गई, सतगुरु का मिलन हो गया, रब्बी प्यार पै गया, आपा टिक गया, सहज टिके हुए हिरदे विच फिर गुण गाइया जियो, फिर अंदर गुण गाए जाते ने वाहिगुरु जी दे उपकारा नू छेते की

0: फिर गुण गाए बिगसै, चूंकि नानक भगतां सदा विगास। जिमें जिमें गुण गाउंदा है अंदर खिड़ाव पैदा होंदा है अंदर हिरदा। मैं बेनती कर लगा खुशी विच भर जांदा है, अंदर एक बड़ा चाह पैदा होंदा है। फिर दिन रात अन दिन उस मालिक दे गुण गाउंदिया विगास में चला गया। पर जा आप साचे पावे, शर्त यह है जे उस सच्चे वाहिगुरु जी नू कोई पा जाए, कोई प्रवान हो जाए। तो जरा गल ध्यान च रख लियो, जेड़ा मालिक दे काबल बन जांदा है अमृत वेला है, गुरसिखी जीवन है, सिमरन है, नितनेम है, शुभ गुण पल्ले बन्ने ने, सेवा विच जुड़िया, करते दी नजर विच पा जांदा है, प्रवान हो जांदा है। ते जेड़ा करते दी नजर विच प्रवान हो जांदा है उस दी झोली विच रब लखां खुशियां भर देंदा है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। मेरे साहब जी कहिंदे ने फिर वो सिमरन करदियां करदियां अंदर हर वेले आनंदत अवस्था विच रहिंदा है जी।
1: अहंकार होमै तजै माया, सहज नाम समावै।
0: इस विच शक नहीं है भी सूरज निकले ते अंधेरा नहीं रह सकदा। जिथे वाहिगुरु जी दी कृपा नाल सिमरन दी अवस्था बन जाए, नाम चले, उथे हंकार नहीं रहिंदा, उथे होमै नहीं रहिंदी। क्योंकि होमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै कठाए। ये नहीं है भी सिमरन भी करदा होवे ते अंदर होमै हंकार भी रहे ते, नहीं। फिर हंकार होमै तजै माया, माया भी मोह छड़ दिंदा, रब नाल प्यार पै जांदा। फिर अंदर हौं हौं नहीं करदा, वो जिहड़ा अंदर हौं हौं करन वाला सी वो उल्ट जांदा है, हां हां। ते ऊड़े नूं औंकड़ हौं बनदा है, हुण ऊड़े नूं औंकड़ ते हां हां बन गया है। ओ तू बस कबीर, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू, हंकार हो मैं तजै माया, सहज नाम समावे। अंदर टिकिया होया नाम विच इतना इकमिक हो जांदा है, बस गल सुनदा भी नाम दी, करदा भी नाम दी, कदम उठदे भी नाम दी बख्शिश नाल। ते साहिब कहिंदे ने फिर इस तरह टिकाओ नाल नाम विच लीन हो जांदा है जी।
1: आप करता करे सोई, आप दे ता पाईऐ।
0: वाहिगुरु जीओ करता आप हो, सब कुछ करन करान वाले आप हो। जे तुसी कृपा करके ए रहमत कर दियो ते फिर जिसनु आप देवो ए बख्शिश, ओही झोली विच ए बख्शिश पवा सकदा है जी।
1: हर जीओ कृपा करे ता नाम त्याईया जीओ।
0: मेरे वाहिगुरु जीओ जे कृपा करो आप ता नाम त्याया जांदा है जी।
1: अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै जीओ।
0: अंदरों धर के रब्बी प्यार विच है, दिखावे दा नहीं है, मतलब दा नहीं है। कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित। अंदरों धर के सच्चे नाल प्यार है। दो गल्लां ध्यान च रखियो, बाहरों बाहरों नहीं है प्यार, अंदरों धर के है ते ओ सच्चे नाल प्यार है, होर किसे नाल नहीं है। अंदर साचा नेहो ते पूरे सतगुरा जियो, पूरे सतगुरु दे राही उस सच्चे नाल उसका

हों तिस से भी मैं उस नू दिन रात सिमरन करा उस दी सेवा विच रहा मैनू कदी भी ना भुले आखा जीवा विसरै मर जाओ मेरे मालक जी दी रहमत हो गई हुण दिन रात उस मालक नाल प्यार पाके जुड़िया होया उथे है प्रेम बन जाए रूप प्रीतम दा प्रेम बन जाए रूप प्रीतम दा प्रेम दी जद सौगात पींदा हां महक उठदा मेरा चौ गिरदा उठ के जद मैं प्रभात पींदा हां उस दिन रात सौन लग्या भी सोला साहब जी दा पाठ वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां नींद लई अमृत वेले उठदियां सार फिर वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां कदम उठाए ते सच ए है फिर दिन रात उस मालक नू चेते रखदा कदी भी नहीं।

0: सो क्यों विसरै जिन सब कुछ दिया, सो क्यों विसरै जे जीवन जिया। ओ कदे ना वसारी अण दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा, मैनू कदी भी ना विसारा, बस नाम लवा ते जीवा, चूंकि नाम दी बरकत नाल ही ते मैं जी रहा। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, ते जिस नाम दी शक्ति नाल मैं जिंदा हाँ, उन्हों भुलावा क्यों। ते मेरे साहब कहंदे ने मैं नाम लवा ते मैनू इंज लगदा है मेरा असल विच आत्मक जीवन जिंदा है, जा नाम लई ता जीवा, ते जे नाम भुल जाए ते सच करके जानियो मैं चलदी फिरदी इक लोथ हां। मेरे साहब जी कहंदे ने नाम लेके ही मैं जिंदगी जी रहा हां जी।
1: श्रवणी सुनी ता एहो मन त्रिपतै, गुरमुख अमृत पीवा।
0: श्रवणी सुनी ता एहो मन त्रिपत हो गया, कन्ना नाल सुनिया मैं रज गया। कुछ भोजन ने मुंह विच पाइए ते पेट भरद, पर नाम दा भोजन ऐसा इस नू रसना नाल बोलिए तां भी तृप्ति है, इस नू कन्ना नाल सुनिए तां भी तृप्ति है, ते नाम दी बख्शिश नू संसार विच अखां नाल वेखिए भी जो दिसै सो तेरा रूप, तद भी तृप्ति है। ते श्रवणी सुनी तां एहो मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवां, मैं गुरु वल मुख करके ये नाम दा अमृत कन्ना नाल सुन सुन के इंज लगदा है जिवें पी रहा हां। एक गल ध्यान च रखियो, ए जुबान मुख पानी पीवे, कोई होर रस पीवे, कोई जूस पीवे, ते इंज लगदा है जिवें मैं मुंह नाल पीता ते मेरा पेट भर गया, मेरी प्यास मुक गई। ते जदों वाहिगुरु दे नाम नूं सुनिया, मैं एक छोटी जी बेनती करांगा, जिहबा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम, अपने मुखों बोल के भी कन्ना नाल सुनना। ध्यान दियो, एक है दूजा बोले ते सुनदे हां, एक है भी आपू बोले ते आपू सुनिया। बस श्रवणी सुनी, जिस दिन ये सुनन की कला आ जाती है ना, समझना सुनिया दुख पाप का नास। वो सुनन की एक अवस्था ये औखी है, गल ध्यान च रखियो, बोलना सौखा है, दूजा बोले ते सुनना सौखा है, पर आपू बोलिए, जपजी साहब आपू बोलिए, जाप साहब आपू बोलिए ते आपू सुनिए, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिए ते कन्ना नाल सुनिए, समझ लेना तृप्ति हो जाती है, तृष्णा प्यास मुक जाती है। ए गुरु ते मुख राही सुनी हुई दात अमृत पीवन वाली अवस्था बन जाती है जी।
1: नदर करे ता सतगुर मेले, आन दिन बबेक बुद्ध बिचरै।
0: नदर करे ता सतगुर मेले, साहब जी दी रहमत होवे, कृपा दृष्टि होवे, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਆਂ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਹੁ ਪਰਚਿਓ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਹਿਤੀ ਸੁਨੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ, ਗੁਰ ਦਇ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅਣ ਦਿਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਰੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोत आईऐ। ए बबेकी मत नाल विचरना खांड खांड कह जीवा ना स्वाद मीठो आवे। अगन अगन कह सीत ना विनाश है। मैं बेनती करांगा बैद बैद कह रोग मिटत ना काहू को दर्ब दर्ब कह को दर्बै ना बिलास है। चंदन चंदन कह प्रगटै ना सुबास बास चंद चंद कह उजियारो ना प्रकाश है। तैसे ज्ञान गोष्ठ करत ना रहत आवे करनी प्रदान पान उद्दत आकाश है। भाई गुरदास साहब कहंदे ने एक गल अकेली मुखों बोलन दी नहीं है गल विचरन दी है। तुसी किथे विचर दे हो किथे जा रहे हो किथे बैठ रहे हो अखां किथे विचर रही है कान तुहाडे की सुन रहे ने उत्थे बिबेकी मत विच चाहीदी है। अण दिन बिबेक बुद्ध विचरै साडी हालत पता की है इंद्री सबल निबल बिबेक बुद्ध परमारथ प्रवेश नाही। गल ध्यान च रखियो सानू पता है अवगुण है अविकार है पता है सानू बिबेक है पर कमजोर है बिबेक। बिबेक दी बुद्धि विच विचर नहीं रहे अकेली बिबेक दी गल करनी ओ इंज है जिवें कोई आखे खंड खंड मूंह ते मिठा नहीं हो जाएगा जिवें कोई आखे अग अग पाला ते नहीं दूर हो जाएगा जिवें कोई कहे डॉक्टर डॉक्टर वैद वैद रोग ते नहीं मिट जाएगा कोई आखे पैसा पैसा द्रब द्रब कह को दरबै ना बिलास है। लखां रुपया कहन नाल तां नहीं लखां रुपया आ जाएगा। चंदन चंदन आखिया खुशबू ते नहीं मिल जाएगी चंद चंद आखिया हनेरा ते नहीं दूर हो जाएगा। विवेक दियां अकेलियां गल्लां करन दे नाल जिंदगी विच रहत नहीं बनेगी जिन्ना चिर अंदर करनी प्रदान नहीं बनेगी। तो अन दिन विवेक बुद्ध विचरै जिथे भी जाओ कुछ करन लगो उथे विचारियो गुरु दी आज्ञा है रब खुश होएगा मेरी जिंदगी धर्म तो टुटते नहीं जाएगी। ए है अन दिन विवेक बुद्ध विचरै विवेकी बुद्ध दे नाल अपना संसार विच विचरना करना जी।
1: अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै
0: अंदर सच्चा नेहो है पूरे सतगुरु जी दे नाल। चे बेनती करांगा जिन्हां दा दिलों धर के रब नाल प्यार पै जांदा है जिन्हां दा दिलों धर के सच्चा प्यार सतगुरु नाल पै जांदा है उन्हां दा बंद बंद ते भावें कटिया जांदा है पर अंदर दा प्यार नहीं को कट सकदा। ए मेरे साहब जी दी रहमत के अंदरों सच्चा प्यार सतगुरु नाल ते रब नाल पै गया है जी।
1: सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जियो।
0: सत संगत मिले वड भाग वड्या भागा नाल सत संगत मिलदी है बिन भागा सत संग ना लब्बे बिन संगत मैल भरी जा जियो। लोग कहंदे ने चंगा मकान बने भागा नाल बनदा है चंगी कार आए भागा नाल आउंदी घर विच पुत्र धीआं व्याह शादी हो जाए भागा नाल मिलदी पर सच करके जानियो ए सब कुछ ते भागा नाल मिलदा है पर सतसंगत भी वड्डियां भागा नाल मिलदी है ते वड्डियां भागा नाल सतसंगत मिले ता हर रस आमदा है। ये गल ध्यान च रखियो ये रस बाहरों नहीं अंदरों प्रगट हुंदा है। सिमरन करदियां करदियां अंदरों दसम द्वार विचों रस चोन लग जांदा है। रस अमृत दसवें चुईजै फिर कह लईए सिमरन करदियां करदियां। देखो किड्डी बख्शिश होई रब ने कीती रहमत सतगुरु जी दे कोल आए सतगुरु जी ने सतसंगत बख्शिश कीती सतसंगत राही नाम सिमरन मिल गया सिमरन ओ कन्ना नाल सुनन लग पए ओ सुरत वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां अंदरों हर रस प्रगट कर

एक है संगत विच बैठिया बैठिया लिब जुड़ी, ध्यान दियो, आखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक है अनदिन रहे लिब लाए, हर वेले लिब जुड़ी हुई है, लिब टूटती नहीं है, बहुत उच्ची वस्त है। लिब कदी कदी जुड़ जाए ते सहज गल है, लिब संगत विच बैठिया बैठिया जुड़ी रहे सहज गल है, पर इत्थों उठ के भी चले जाइए, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल, ए हकीकत है के पंच जना सो बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले, ओ वाली अवस्था बन जाए, ओ है फिर बाहरों दुनिया दा काम कार कर दिया, अंदर दी लिव नू उस विच खचत नहीं होन देना, अंदर दी लिव अंदर दा रब्बी प्यार। मैं फिर बेनती कर लगा, लिव दे अर्थ की ने, अपने प्यारे प्रीतम वाहिगुरु जी दी तरफ प्यार भरी बिरती, प्यारे वाल प्यार भरी बिरती नू लिव कहंदे ने। ओ हुण रब नाल ऐसी लिव अण दिन लग गई, हुण सहज विच ही वाहिगुरु विच ओ समाया रहे।

अपने नाल मिला लो, मैं आप जी दे महल विच पहुंच जावां, मैं आप जी दी हजूरी विच चला जावां, सो दर आ गया हां, सो घर चला जावां, ते सो घर तो सो पुरख तक पुज जावां। ए मेरे मालिक दी रहमत ते बख्शिश धन गुरु रामदास पातशाह जी अज दे हुक्म विच कीती है। आओ लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन उपदेश श्रवण।

0: ये पावन लड़ीवार शब्द 1127 अंग तो आरंभ होके 1128 ते संपूर्ण हुंदा है। भैरो राग है ते हजूर चौपदे पद दे अर्थ ने बंद, ये चार बंदा वाला शब्द है। पहले घर विच गाउन दी हिदायत कीती है, एक करते दा आराधन करदे आ, ओ एक ओंकार जिस नूं सतगुरु दी कृपा नाल जानिया जांदा है जी।
1: जात का गर्व ना करिया हो कोई,
0: संसार विच वंड पै गई, कोई कहंदे मैं उच्ची जात दा हां, तू नीवी जात दा है। सतगुरु कहंदे ने भलियो इस जात दा गर्व क्यों करदे हो? जात ब्राह्मण होवे, खत्री होवे, वैश होवे, शूदर होवे, ये चारे वर्ण करते वल्लों जो बनाए ने, इस विच किसे तरह दा भी हंकार उच्ची जात वाले नू नहीं करना चाहिदा है जी।
1: ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई,
0: जेड़ा ब्रह्म बिंदे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ब्राह्मण नाल जुड़े, ओ ब्राह्मण ते जेड़ा ब्राह्मण होके मैं बेनती करा उस वाहिगुरु दा सिमरन ना करे कहता ब्राह्मण है। इस करके जात दा गर्व नहीं करना, मैं उच्ची जात दा हां, सच ते है सा जात सा पत है, जे हे कर्म कमाए, सतगुरु कहंदे जेहो जे कर्म कमाएगा गल ते उस कर्मा दे आधार ते उसका जीवन बनेगा, ना कि एक रब वल्लों मिली होई शरीरक जात नाल जुड़ के उस जोत नूं भुल जाएगा। जात मैं जोत, शूद्र विच भी ओही जोत, वैश विच भी ओही जोत, ब्राह्मण ते खत्री विच भी ओही जोत। जात मैं जोत ते जोत मैं जाता, अकल कला भरपूर रहिया। ते इस करके साहब कहंदे ने जेड़ा ब्रह्म बिंदे जो ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म दा अनुभव करे असल विच ओ ब्राह्मण है जी।
1: जात का गर्व ना कर मूरख गवारा,
0: ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी दा पावन शब्द मेरे पातशाह की कहंदे ने जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा। ऐ मूर्ख गवार तू जात दा हंकार ना कर, ते गवार दे विद्वाना अर्थ कीते ने जो गाम तो आर रहे, गाम पिंड, ए शरीर पिंड है, इस पिंड तो बाहर ना निकले, वो समझ लेना शरीर विच ही फसिया रह गया, ते शरीर विच अंदर दी जात नाल फस गया, ते जात तो बाहर ना निकलिया, शरीर दी लालसा तो बाहर ना निकलिया, ते समझ लेना ओ मूर्ख है ओ गवार है जी।
1: इस गर्भ ते चले बहुत विकारा,
0: इस हंकार नाल अगो होर बड़े विकार चलदे ने, हंकार पैदा होया। मैं बेनती करा होमे विच भरिया पता नहीं केड़े केड़े उपद्रव करेगा, नफरत विच भरेगा, ईरखा करेगा, वैर विरोध करेगा, बोलो किन्ने वकार को होर चलनगे। इस करके साहब जी कहंदे ने इस गर्भ ते चल है बहुत विकारा, अगो होर विकारी जीवन बनेगा, बनना सी निर्विकार ते भर गया विकारा नाल, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नाल भर गया। इस करके इस गर्भ ते चल है बहुत विकारा
1: रहाओ।
0: विश्राम दे के सतगुरु फरमान करदे हन जी,
1: चारे वर्ण आखे सब कोई,
0: ये सारे कहंदे ने चार वर्ण है ब्राह्मण खत्री वैश शूद्र, ये ते गल सारे करदे हन जी।
1: ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई,
0: ये पैदा कित्थों होए ने? ब्रह्म तो, ते पैदा करन वाला ब्रह्म है, ते ध्यान च रखियो, ते जिस ब्रह्म तो पैदा होए फिर ब्रह्म रूप होए के जात विच जुड़ गए सी, जिस तो बने उन्नू भुल गए, ते जो बने सी उथे आके जुड़ गए, इस करके साहब कहिंदे ने इह सारा संसार ते सारी रचना उस ब्रह्म तो ही पैदा होई है जी।
1: माटी एक सगल संसारा,
0: मिट्टी एक है, सारा संसार एक मिट्टी तो बनी है। गलती हंच रख लियो, कुमार है एक जो माटी गूंदी, बहुविध बानी लाई, काहू मैं मोती मुकताहल, काहू व्याद लगाई। कुम्हार ने मिट्टी गुन्नी, उस तो भांडे बनाए। एक भांडा सराफ ले गया, सुनियारा ले गया, उन्हें उस मिट्टी दे भांडे विच मोती रखे, मुकताहल रखे, हीरे लाड़ रखे। एक भांडा कोई बीमार सी बंदा, उसने मल मूत्र करना सी, उस दे कोल जाके रख दिता। हुण भांडे विच मैं बेनती करा, फर्क कोई नहीं है। काहू मैं मोती मुकताहल, काहू ब्याद लगाई। गल थोड़ी ध्यान च रख लियो, शरीर दा भांडा है, किसे ने इस विच वाहिगुरु नाम दे मोती पा ले, किसे ने इस शरीर विच हंकार गंदगी भर ली। मालक दी बनाई मिट्टी एक है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पहले को मंदे। मैं एक बेनती करा, अगर जिंदगी विच उस एक मिट्टी नू समझ लईए, भी उस पांच तत दी मिट्टी दे नाल ए सारा संसार बनिया, ते साहब जी कहन लगे माटी एक सगल संसारा।
1: बहुविध भांडे घड़े कुमारा,
0: बहुविध भांडे घड़े, कोई छोटी जी कीड़ी बना देती, ध्यान च रख लियो, एकल माटी, कुंजर चीटी, कुंजर कुंचर हाथी, चींटी कीड़ी, एकल माटी, कुंजर चीटी, भाजन है बो नाना रे, भाजन बर्तन, भाजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। उस एक मिट्टी तो ए सारा संसार बनिया, केड़े छूत छात विच ऊच नीच दे भेद विच पै गए हो। साडे ते पता गुरु साहब जी ने किन्नी बख्शिश कीती, सानू पांच इकट्ठे दिते, संगत पंगत ध्यान च रखियो, सानू संगत कठी, सानू पंगत कठी, साडा सरोवर कठा, साडा गुरु ग्रंथ साहिब कठा, साडा बाटा कठा। किड्डी बख्शिश है, गुरु नानक आए उन्हां संगत कठी कीती, गुरु अमरदास आए उन्हां नाल पंगत कठी कर दिती, धन गुरु रामदास पातशाह आए उन्हां साडा सरोवर, इको च सारे स्नान कर सकदे हो, सरोवर कठा। धन गुरु अर्जन देव जी आए, गुरु ग्रंथ साहिब खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चौं वर्णा को सांझा, साडा गुरु ग्रंथ साहिब कठा कर दिता। दसम पातशाह आए, सानू एक बाटे विच सारियां नू अमृत छका दिता। ओ भलियो साडे पांच इकट्ठे, संगत पंगत सरोवर गुरु ग्रंथ साहिब ते बाटा इकट्ठा, ओ केड़े भेद भाव विच पै गए। ते धन गुरु अमरदास जी ने ते बौली लाई सी भी सारे इत्थों इशनान करोगे, पंगत बना दिती, सारे इक्को पंगत विच बैठोगे। अज केड़े भेद भाव विच असी पै गए। ते मेरे साहब कहन लगे इक्को मिट्टी तो सारा संसार बनिया, ते तुसी केड़ी ऊच नीच ते भेद भाव दी गल पै करदे हो जी।
1: पंच तत मेल देही का आकारा,
0: चूके पांच तत को तन रचियो, जानो चतर सुजान, ए पंच तत मेल देही का आकारा, आकाश वायु अगन जल ते धरती, ए पंजा तत्तां नाल सारा संसार बनिया। पंच तत मेल देही का आकारा, अगो हजूर अगली पंक्ति च फरमान करदे हन जी,
1: घट वद को करे विचार,
0: कोई विचार करके दसो भी को घट वद है। उच्ची जात वाले दे अंदर कोई पंच तत दी मिट्टी वद नहीं लगी, उच्ची जात वाले दे अंदर कोई जोत वद नहीं जगदी, नीवी जात वाले दे तन नू कोई मिट्टी घट नहीं लगी। घट वद को करे विचार, कोई करो विचार, तमाम संसार इको जी रचना तो बनिया। ते फिर ए साडे मानसी भेद ने, अंदर दी साडी नीच भावना, कि अपने नू आपस को दीर्घ कर जाना और को लगमात मनसा बाचा करमना। मैं देखे दोजक जात अपने आप नू जानदा मैं दीर्घ मैं वड्डा ते दूजे नू कहंदा लगुमात ए लघु है छोटा। साहब कहन लगे ना ना भलिया इको जी करते रचना रचाई इको जी सब दे अंदर जोत पाई तो तू केड़ी अवस्था दे विच ए घट वध ऊच नीच दे भेद भाव विच चला गया है जी।
1: कहत नानक एहो जीओ कर्म बंध होई।
0: धन गुरु अमरदास पातशाह जी फरमान करदे ने कहत नानक एहो जीओ कर्म बंद होई। ए कर्मा दे बंधन विच फसिया हो जाए कर्म की करदा जरा गल ध्यान च रखियो। गंगू ब्राह्मण है बहुत उच्ची जात है पर काम किन्ने नीच कीते ने। साहबजादियां नू माता गुजर कौर जी नू घर विश्राम दे के सवेरे ठाणे फड़ौंदा पिया। जात ब्राह्मण है कर्म शूद्रां तो भैड़े ने। इधर भाई जाता जी जात शूद्र है कर कर्म ओ रंगरेटे गुरु के बेटे पै बांधे ने। यह कर्म की करदा है कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई। ए जी कर्मां दे बंधन विच की कर्म पिया करदा दे आधार ते गल है जी।
1: बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई।
0: देखो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने किड्डी बख्शिश कीती है इत्थे आके सानू इन्हां चीजां तों मुक्त कीता है। भलियो एहो जी ऊच नीच भेद भाव तों मुक्त हो जाओ वैर विरोध ईरखा निंदा चुगली तों मुक्त हो जाओ। ਭਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪਈਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹੁਲ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਹ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਨੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਪਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੋਲੀਆਂ ਪਿਆ ਭਰਦਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਸਹਿਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਦਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहिबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हां तां साडियां गुरु साहिबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहिबां नाल गल्लां करन दा इक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
3: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।
4: ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ।
5: कुलदीप सिंह औलख वालों स्पोर्ट्स न्यूज बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खेड जगत दियां खबरां लेके हाजिर है हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दी न्यूज टीम। पहला चोणवीआं खबरां। वालारूस ने कैटलिन हाल्स नूं गुआ दिता पर सिडनी चौगुणी है। कुलदीप सिंह औलख वालों स्पोर्ट्स न्यूज बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खेड जगत दियां खबरां लेके हाजिर है हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दी न्यूज टीम। पहला चोणवीआं खबरां। वालारूस ने कैटलिन हाल्स नूं गुआ दिता पर सिडनी चौगुणी हैडर विच स्काटलैंड टेस्ट लई

ट्राफी नाल वापसी। वेस्ट इंडीज ने भारत नूं हरा के सीरीज बराबर कीती। की न्यूजीलैंड भारत दे वड्डे शाट खेडण वाले बल्लेबाजां नूं रोक सकेगा? मिशेल सेंटनर ने अपनी योजना दा खुलासा कीता। हुण खबरां विस्थार नाल। वालारूस ने कैटलिन हाल्स नूं गुआ दिता, पर सिडनी चौगुणी हैडर विच स्काटलैंड टेस्ट लई माया स्टीवर्ट नूं वापस प्राप्त कीता। माया स्टीवर्ट शनिवार नूं स्काटलैंड दे खिलाफ सिडनी विच होण वाले मुकाबले लई वालरूस टीम विच विंगर वजों वापस परत रही है। फुलबैक कैटलिन हाल्स सिर विच सट लगण कारण मैच नहीं खेड सकेगी, जिस नाल टीम नूं झटका लगा है, पर स्टीवर्ट दी वापसी टीम लई इक वड्डी राहत है। जो कि 20 सालां दी है, उस दी सिर दी सट कारण गैर हाजरी टीम लई नुकसानदेह है, पर वालरूस ने तजर्बेकार विंगर माया स्टीवर्ट नूं टीम विच वापस शामिल कर लिया है, जिस नाल नूं फिर तों बल मिलिया है। अपने आखिरी टेस्ट मैच विच वालरूस ने पिछले महीने एडिनबर्ग विच 30-10 दे वड्डे फर्क नाल जित दर्ज कीती सी। वालाबीज ने आल ब्लैक्स दे खिलाफ ब्लेडिस्लो कप दे आखिरी टेस्ट लई डेकलन मेरेडिथ ते भरोसा जताया। डेकलन मेरेडिथ अपने जवान टेस्ट कैरियर विच सिर्फ चौथी बार आल ब्लैक्स दे खिलाफ फ्लाई हाफ दे तौर ते खेडणगे, क्योंकि वालाबीज सेट डे नूं सिडनी दे स्टेडियम आस्ट्रेलिया विच होण वाले ब्लेडिस्लो कप दे आखिरी मुकाबले लई बदला कर रहे हन, जिन्हां ने जुलाई विच फ्रांस दे खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू कीता सी। मेरेडिथ ने नंबर 10 दी जर्सी विच बेन डोनल्डसन दी थां लई है। बैकअप फ्लाई हाफ हैरी मैकलॉगलिन फिलिप्स जेकर ओ सिडनी विच रिजर्व वजों आउंदा है तां अपना टेस्ट डेब्यू करेगा। उस दे नाल बेंच ते रिजर्व स्क्रम हाफ क्लानी थॉम्स भी शामिल है, जिसने अजे तक कोई ब्लेडिस्लो कप टेस्ट नहीं खेडिया है। बाकी वालाबीज दी मैच डे टीम विच साबका आल ब्लैक एडन रॉस लुजहेड प्राप दे तौर ते हुक्कर जोश नासर दे नाल खेडणगे। हुक्कर विली पोलार्ड, लॉक जोश कैनम, ओपन साइड फ्लैकर कार्लो टिजानो अते यूटिलिटी बैक फिलिपो डॉगनू रिजर्व वजों वालाबीज दी टीम विच वापस आ गए हन। ब्लेडिस्लो कप टेस्ट स्टेडियम आस्ट्रेलिया विच इक इतिहासक चौकड़ी हैडर दा समाप्त करेगा। आस्ट्रेलिया दा रग्बी लीग विश्व कप ते दबदबा। लगभग 10 साल पहला औरतां दे रग्बी लीग विश्व कप दा फाइनल ओ आखरी दिन सी जदों सब कुछ बदल गया। इस दे बाद वाले सीजन विच इंटरस्टेट सीरीज NRL दे झंडे हेठ आ गई। पहला NRLW सीजन शुरू होया अते औरतां दे रग्बी लीग ने वड्डियां छलांगा मारनियां शुरू कर दित्तियां। उस इतिहासक पल दे कुछ खिडारी जो अज कल पैरामाटा विच शुरू होण वाले आस्ट्रेलिया ते समोआ दे मैच नाल शुरू हो रहे इस साल दे रग्बी लीग विश्व कप लई अजे भी मौजूद हन। ओ औरतां दे रग्बी लीग दे विस्तार लई अते NRLW तक पहुंचण वाले सुधरे होए राह दे लाभपात्रियां वजों जो संभव है उस दी इक झलक पेश करदे हन। औरतां दी खेड भी उसे रस्ते ते है, पर अजे ओनी अगे नहीं। इक दिन समोआ वर्गी टीम विश्व कप नूं सचमुच चुनौती दे सकदी है। फिजी विश्व कप विच अपनी शुरुआत करेगी अते पापुआ न्यू गिनी हाल दे सालां विच अपनी लगातार तरक्की नूं जारी रखण दी कोशिश करेगी। एशियाई खेडां 2023 दे मैंस हाकी दे फाइनल जिथे मलेशिया ते भारत दा मुकाबला होया, उस मैच विच भारतीय खिडारियां ने गोल करके खुशी मनाई। हुण 17 सालां बाद पंजाब विच मुड़ अंतरराष्ट्रीय हाकी दा दौर शुरू होवेगा, जदों भारत जलंधर अते मोहाली विच 27 अक्तूबर तों 2 नवंबर तक दूजी बार मैंज एशियन चैंपियन ट्राफी दी मेजबानी करेगा। इस राज विच आखरी बार अंतरराष्ट्रीय हाकी टूरनामेंट 2009 विच पंजाब गोल्ड कप आयोजित होया सी। इस टूरनामेंट विच 6 टीमां जिन्हां विच मेजबान भारत, मलेशिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, जापान अते बंगलादेश शामिल हन, खिताब लई जूझणगियां। पंजाब दा भारतीय हाकी विच उधम सिंह अते बलबीर सिंह सीनियर वर्गे दिग्गजां तों लैके मनप्रीत सिंह अते हरमनप्रीत सिंह वर्गे मौजूदा खिडारियां तक पीढ़ियां तों योगदान रहा है। जलंधर दे बल्टन पार्क विच ओलंपियन सुरजीत सिंह हाकी स्टेडियम 27 अक्तूबर तों 2 नवंबर तक उद्घाटन समारोह अते लीग पड़ा दे मैचां दी मेजबानी करेगा। इस तों बाद टूरनामेंट मोहाली दे ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हाकी स्टेडियम विच 4 अते 5 नवंबर नूं सेमीफाइनल अते मेडल मैचां लई अगे वधेगा।

0: वेस्टइंडीज ने भारत नूं हरा के सीरीज बराबर कीती। वीरवार नूं राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद विखे खेडे गए चौथे T20 आई मैच विच भारत 248 दे टीचे दा पिछा करदे हुए 24 दौड़ां नाल हार गया, जिस नाल 5 मैचां दी लड़ी 2-2 नाल बराबर हो गई। तिलक वर्मा अते नितीश रेड्डी ने 6वीं विकट लई 70 दौड़ां जोड़ के भारत नूं मैच विच वापसी करवाई, पर 17वें ओवर विच तिलक अते 19वें ओवर विच रेड्डी दे आउट होण कारण भारत लई जितना बहुत औखा हो गया। पॉल ने वेस्टइंडीज वल्लों गेंदबाजी विच 4 ओवरां विच 41 दौड़ां दे के 5 विकटां लईआं, जिस नाल उस दी टीम नूं जित हासिल करन विच मदद मिली। इस तों पहलां शाई होप ने अजेतू सैंकड़ा जड़िया, जिस नाल वेस्टइंडीज ने पहलां बल्लेबाजी करदे होए 247 दा स्कोर बनाया। वेस्टइंडीज ने 16 छक्के अते 18 वादू दौड़ां बनाईआं, जदों कि भारतीय गेंदबाजां नूं रोकण विच काफी मुश्किल आई। होप दा इह सैंकड़ा उसदी लड़ी विच दूजा, टूर ते चौथा अते T20 अंतरराष्ट्रीय मैचां विच तीजा सी। की न्यूजीलैंड भारत दे वड्डे शाट खेडण वाले बल्लेबाजां नूं रोक सकेगा? मिशेल सेंटनर ने अपनी योजना दा खुलासा कीता। न्यूजीलैंड दे वाइट बाल कप्तान मिशेल सेंटनर भारत दे धमाकेदार बल्लेबाजां खिलाफ अपनी टीम सामने आउण वाली चुनौती बारे पूरी तरह जाणदे हन। उन्हां कहा, तुहानूं उस मुताबिक योजना बनानी पैंदी है, हालातां दा जायजा लैणा पैंदा है अते उन्हां दा फायदा उठाउणा पैंदा है। सेंटनर ने मन्निया कि इहो जिहे हमलावर विरोधियां विरुद्ध बाउंडरियां आउणगियां, पर उन्हां जोर दे के कहा कि गेंदबाजां नूं उन्हां दरमियान पैण वालियां गेंदां ते ध्यान देना चाहीदा है। अभिषेक, ईशान अते संजू दा सामना करन दी संभावना ने सेंटनर नूं खास करके पावर प्ले दौरान रणनीतिक लचकता ते जोर देण लई प्रेरित कीता है। सेंटनर ने स्वीकार कीता कि आधुनिक T20 क्रिकेट दे पावर पैक सुभा ने गेंदबाजां लई जीवन नूं होर मुश्किल बना दिता है, जिस विच एक स्पैल विच 30-40 दौड़ां देना भी वधिया प्रदर्शन हो सकदा है। IPL विच इस नौजवान बल्लेबाज दे कारनामे वेखण तों बाद न्यूजीलैंड दे कप्तान नूं उम्मीद है कि भारत दे पावर हिटर शुरुआत तों ही उन्हां दे गेंदबाजां नूं परखणगे। भावें उह सूर्यवंशी होवे, अभिषेक, ईशान जां संजू, भारत कोल पूरी लाइन अप विच पावर है। हरमन रेडियो हर रोज लैके आउंदा है खेड खबरां। खेडां संबंधी कोई भी जानकारी सांझी करन लई साडे नाल संपर्क करो। मिलदे हां अगले बुलेटिन विच, धन्नवाद।
1: हरमन रेडियो दे न्यूज डेस्क तो तुसीं दिन विच 6 वार खबरां दा बुलेटिन अते 2 वार विस्तार विच खबरसार सुनदे हो। तुसीं इह बुलेटिन व्हाट्सएप ते भी सबस्क्राइब कर सकदे हो। पंजाब जिस नूं कहिंदे ने, ओह धरती दा सिर्फ ओही टोटा नहीं जिथे 5 दरिया वहिंदे सन। इस पंजाब दीआं सरहदां तों बाहर भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानूं रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राहीं, तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो उत्ते। सुनदे रहो अते सांझ

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। अगे अगेरे जा, कर्मा दा खट्टिया खा।
1: भाव ए है कि जिथे मर्जी चले जाओ, देशां प्रदेशां च फिर लवो, कमाई तां कर्मा दी ही खानी है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: रोटी हजम नहीं होंदी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल दा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: बहाने बारे सियाणे कहंदे हन कि जिस नू नचणा ना आउंदा होवे ओ कहंदा है धरती गिल्ली है। सुने विचारां दे

0: चाचा जी तुहानू हलवाई ते खेती बाड़ी दे काम च कोई फर्क नहीं दिंदा?
1: कोई फर्क नहीं ना, फर्क किवें नहीं? SDM जी ए दसो के खेती बाड़ी च की काम करने पेंदे आ?
2: हल वाहने पेंदे आ।
1: ते फिर मैं भी ते यही अर्ज कर रहा के जेड़े लोग हल नाल वाही करदे ने उहनां नू हलवाई कहंदे ने। ते तू मठियाईआं वाले समझी जान।
3: वेरी स्मार्ट चाचा जी, वेरी स्मार्ट।
0: इसे चतुराई दी तां खट्टी खांदे आ।
2: चाचा जी मैं तुहाडी चतुराई दी इनू तां मनूंगा, गुआंड च मेरा 5,000 रुपया फसिया पिया, जे किते ओ कढ़ा के दिखा दो तुहानू मैं तां मनूंगा।
1: यार तू किदां दा SDM, ओ भी पंजाबी जिन्हों जेब चो पैसे भी कढ़ाने नहीं आउंदे। नाले तीए थो मैं क्यों पावां अपने गल च स्यापे? मैं ता सिर्फ तरीका दस सकदा, जे कढ़ा सकदा ता पैसे कढ़ा नहीं आपे।
2: जल्दी दसो केड़ा है तरीका।
1: मान ला तू मेरे पैसे देने आ ते मैं तेरे घरे आके लेने आ।
2: अच्छा,
1: तू अपनी अड्डी चोटी दा जोर ला ली ते मैं तेनू पैसे कढ़ा के दिखाऊ।
2: ठीक है,
1: तैयार?
2: हाँ तैयार।
1: आवा फिर
2: आजो।
1: SDM जी घरे आ?
2: आहो।
1: जनाब ने 5,000 रुपया लिया सी।
2: आहो लिया सी। फिर?
1: फिर की मेरे पैसे मोड़ ते मेनू तोर।
2: नहीं मोड़दा लाला जोर।
1: मैं जुत्ती लानी ला ते तू बाद च कहना एदी किसी लोड़।
2: जुत्ती लानी कोई खेल है?
1: मैं तेरी हुणे बना देनी रेल ते फेर ना कहीं सवारियां वेख दियां।
2: ओ वेखी जान।
0: SDM थोनू चाचा जी दा पता नहीं, इन्हां ने थोड़े करे थोड़ा ही जुलूस कड के रख देना। मत्थे मारो पैसे।
2: ओ केड़े पैसे?
1: नीलू हुण तू पिछे हो जा, इन्हे आए नहीं मोड़ने पैसे। पैसे ता हुण मेरी जुत्तियां कढ़ाऊ।
2: हाय मर गया, आय मर गया।
1: साला कहंदा मैं पैसे नहीं देने।
2: ओ बंद करो।
1: पैसे किवें नहीं देने?
2: आ ना मारो।
1: पैसे ता तेरा प्यो भी दऊ।
2: ओ छड्ड दियो।
3: चाचा जी ये नीलू दे SDM आ, आ की करदे हो?
1: बई अपनी अगराही करदे आ।
2: ओ बंद करो।
1: असी केड़ा बाणियां वांगू बई खाते भरदे आ।
2: ओ मर जागा जे।
1: असी ता फिर जुत्ती नाल ही साफ करदे आ।
2: ना मारो।
0: चाचा जी कुछ ते करो संग।
2: नीलू चाचा जी दी जुत्ती नू ब्रेका लाओ, मैं सिख लिया अगराही दा ढंग।
1: अजे किथे सिखिया?
2: आ मर गया।
1: जे सिखिया हुंदा हुणू पैसे ना मोड़े हुंदे?
2: ना मारो।
1: जुत्तियां खाण दी बजाय हथ ना जोड़े हुंदे?
2: मैनू माफ कर दियो, मेरी तौबा, मेरे प्यो दी तौबा। आ चको पैसे।
1: ए ता होई ना गल।
0: हुण की स्वाद आया, 100 छित्तर भी खा ले ते गंडे भी खा ले।
2: ठीक है, हुण मैं प्रैक्टिस करांगा। चाचा जी तुसी बैठो, मैं पैसे ले आना ना।
1: भाई जिदे कोलो पैसे लेने आ ओदे नाल तरीका अजमा। मैं ता तेनू समझाउणा सी तो दित्ता समझा।
3: नहीं चाचा, हुण रैसल जरा तू ही करवा।
1: ठीक आ, आज वे रैसल कर लवे।
2: चाचा जी हुण जरा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा।
1: आ जा।
2: चाचा जी घरे ही हो?
1: कल नू आई, अज मैं नीलू दा घर आ। अच्छा, आ जा आ जा आ जा।
2: जनाब ने 5,000 रुपया लिया सी उधार?
1: हां जी लिया सी, बहुत चिर दा। ते फिर मोड़ो, ओ तुसी आप ही नहीं लभदे, मैं सा परसों दा चक्की फिरदा।
0: चाचा जी दिस इज नॉट फेयर।
2: चाचा जी मैं चीटिंग नहीं चलन देनी, इनकार तुहानू करना ही पेगा।
1: इनकार करके मैं छित्र खाने? नाले जद मेरे कोल पैसे है गया, मैं क्यों जवाब देवां? इन्ना थोड़ा तुसी मौके सर मेरा काम सारिया। नाले टाइम सर मोड़ के गाहां नू थो तो लैण वाला बनू।
2: अच्छा नीलू, मैं अंदर जाके फिर पहना।
1: चाचा जी तशरीफ तो रखो।
2: तशरीफ किवें रखा, रखण जोगी तो छड्डी नहीं।
4: हरमन रेडियो 24 घंटे।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है कि चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
0: रुक दे फट्टा।
2: औलाद ले बंदे नू की पापड़ बेलने पैंदे है।
3: आहो ते औलाद भावे अगो पापड़ा दा कौड़ी मोलना पावे। अजकल दी कलयुगी औलाद वेखी दी है। मुंडा अपनी वहुटी ते अपने बच्चे लैके अंदर एयर कंडीशन कमरे च सुता हुंदा ते बलदी दुपहरे बुढ़ा प्यो बाहर अपनी मंजी तो खूंडी नाल कुत्ते नू उठाउण डिया हुंदा। तो कुत्ता भी अगो घूरियां पा के आखण डिया हुंदा बहुता चौधरी ना बन, मेरी ते तेरी कुछ नहीं इज्जत इस घर च।
2: ते कुगी साहब कई नूहां एडियां करख्त हुंदियां ने बंदे नू शिकायत लाउणगियां कि बापू जी सारा सारा दिन वेहले रहिंदे ने।
3: ते बंदा पूछे भी भलीए लोग 90 सालां तो उपर दा हो गया बाबा, ओनू हुण मिलटरी च भर्ती करा दईए।
2: ते कई कहणगियां बापू जी कोलों वो बड़ी आउंदी है।
3: ते हुण दस भी बापू लागे धूफ बाल के रखीए।
2: ते कईआं नू तां इतराज़ हुंदा है भई साडा बाबा बोलदा बड़ा है।
3: आहो तुसी ते उडीकण डए हो भी कदों बाबे दी बोलती बंद होवे ते सारा माल सांभीए। साडा एक ताया सरकारी महकमे चो रिटायर होया। रिटायर कदों होया बेचारे नू वक्त ही पै गया। एक नू आउंदी आके कहिंदी पापा जी हल्दी ते लिया दिओ। दूजी कहेगी पापा जी सोन दी दुकान तो बेसन ते फड़ियो हां। तीजी कहेगी पापा जी आ काका चुक्यो जराक। कोई मुंडा आके कहेगा बापू जी कपड़े ते प्रेस करा के लिया दो। नू जाके कहेगा डैडी जी आ बिजली दा बिल जमा करायो। एक दिन साडा ताया दुखी हो के कहिंदा यार मैनू ते समझ नहीं आउण डई वी मैं ताडा फादर हां के बहादर हां।
2: दरअसल घोगी साहब ए बुजुर्गां दी उम्र फिर ऐसी हुंदी है कि इस उम्र च हर बुजुर्ग इहो चाहुंदा कि उहनूं घर चों प्यार इज्जत ते आराम मिले।
3: पर कई मतलब प्रस्त बच्चे इन्हां गल्लां दा जरा भी ख्याल नहीं रखदे। आपणे पिंड वाला बचेतर सिंह नहीं उहदा किस्सा याद ही।
2: हांजी
3: एक दिन आपणे मुंडे नूं कहिंदा पुत्तर मेरी उम्र वडेरी हो गई है काका मेरे को हुण काम नहीं हुंदा मैनूं कमां करां तूं छुट्टी दे।
2: अच्छा
3: ते मुंडा अगों फराख दिली नाल कहिंदा इह कीड़ी गल है बापू ले फिर अज तो बाद तेनू कोई काम नहीं कहना अज तो बाद तू मौजी ठाकर।
2: अच्छा।
3: मौजा लै के अगले दिन सवेरे उठदे कहिंदा बापू मैं चलिया खेत नू डंगर छावे बन के गतावा कर दई ते फिर तू मौजी ठाकर।
2: अच्छा।
3: बस मौजा लै के जान लगा फिर कह गया डंगरा नू नुआ के दुपहरी मेरे लिए रोटी लै आवी खेत फिर तू मौजी ठाकर। मौजा लै के बापू मर गया बेचारा डंगरा नू छावे बन डंगरा नू गतावा कर डंगर नवा दुपहर हो गई।
2: अच्छा
3: उतो रोटी लैके खेत वाल तुर पिया बेचारा। खेत जाके मुंडा कहिंदा बापू जब तक मैं रोटी खाना बल्द खड़े क्यों करने हैं तू ऐदा कर दो सियार तू कढ़ लै फिर तू मौजी ठाकर। मौजा लै के दुखी होया बापू बेचारा हल फड़ के हल वाहन लग पिया। मुंडा रोटी खा के सौ गया। शाम तक बेचारा बापू कला ही हल वाहुंदा रहा। शाम नू जदो मुंडा उठिया ते उठ के कहिंदा बापू लिया हल मैनू फड़ा ते तू इथों पठे वढ़ के लै जा घर जाके कुदर के डंगरां नू पा दे फिर तू मौजी ठाकर। मौजा लै के गुस्से दा भरिया पीता बापू बड़े दुखी जे माना पठे वढ़े पठिया की पंड सिर ते रखी तुर पिया। हुण सारे दिन दा थकिया सी तुरे जांदे दा पैर थिड़क गया बापू थले ते पंड उत्ते। हुण बुजुर्ग शरीर सी पंड थल्यों निकलिया ना गया। उधरों मुंडा जदों खेतों वेला होके घर नूं तुरिया नेरे च उहने पंड थल्यों दो पैर जे निकले वेखे।
2: अच्छा
3: ते फिर उतो ही पुछदा कहिंदा ओए आ केड़ा वो पंड थले पिया। ते बापू फिर सड़िया बलिया पंड थल्यों ही बोलिया
2: की
3: कहिंदा पांड चाखे वेख तेरी बेबे दा खसम पिया आई मौजी ठाकर मौजा लैन लिया के।
4: क्लासिक पंजाबी कॉमेडी हरमन रेडियो।

0: भाई धोती शाह जी मन गए ना थोड़ा दिमाग बहुत है हर थां जाके रेट मारी जाने हो।
1: ले हुण तू दस भी साडे तो भी किसी का दिमाग तेज हैगा।
0: पोटू शाह जी ऐ ना कहो थानू पता नहीं जे दुनिया विच सब तो ज्यादा कोई तेज है ते ओ अंग्रेज है।
2: Take me, I'm yours.
0: जिसने बहुत वड्डा प्लेन बना दिता ते बंदे नू हवा विच उड़ा दिता।
1: ओए हुण तू अंग्रेजां दी गल ना कर हुण तां अपने रोडवेज वाले प्लेन पान नू फिरदे आ।
0: ना पोटू शाह जी जे रोडवेज वाले प्लेन पालणगे फिर होऊगा की।
1: ले होऊगा की बंदे ने जाके क्या करना आज जी दसो भाजी अमृतसर केड़ी बस जानी है ते अगे उन्होंने क्या करना ओ बसा नहीं जी हुण ते रोडवेज ने प्लेन पाले आ हुण ते प्लेन ही जाया करूगे। अच्छा फिर दसो लुधियाने केड़ा प्लेन जाना आओ देखो जी सामने जिच मिस्त्री हवा भरदा पिया।
0: ना मेरे पोटू शाह जी हवा भरन तो बाद की होया करना।
1: जदों यात्रियों ने प्लेन च बह जाया करना एक दूजे नूं क्या करना यार प्लेन तां फुल हो गया पर हजे तक पायलट नहीं आए ते फिर उधरों ड्राइवर ना तमाखू मल दिया करना ओए गल सुनो भाई पायलट के दे बाहरों आने जद बसा ही चलाने तो प्लेन भी अही हटाने।
0: चलो शाह जी मान लिया के प्लेन ड्राइवर चलाया करूगा तुसी ए दसो फिर कंडक्टर सवारियां ने किदा पेश आया करूगा।
1: ले कंडक्टर ने सीटी मार के कहना भी गल सुनो लुधियाने तो राह दी सवारी कोई ना होवे नहीं तो उतो चक के थले सुटनी पैनी है।
0: ना शाह जी ए ता गल सी ड्राइवर ते कंडक्टर दी पर थानू पता है प्लेना दे विच एयर होस्टस भी हुंदी है तुसी मैनूं ए दसो कि रोडवेज दे प्लेना विच एयर होस्टस कित्थों आणगीआं।
1: ले कित्थों आणगीआं आ जिहड़ीआं बणसो हुणी अड्डे ते पाणी पिआउंदीआं एही विच चाह वरताउंदीआं।
0: वाह पुट्टू शाह जी किन्ना वधिया होऊगा जदों इन्हां दे प्लेना विच खाण पीण दीआं रेहड़ीआं घुम्मणगीआं।
1: ना रख रेहड़ीआं दी आस बणसो ने इक हथ चाह वाली कितली फड़ी होणी है ते दूजे हथ च गलास।

0: अच्छा शाह जी ये दसो रोडवेज दे प्लेना विच एयर होस्टेस अनाउंसमेंट किवें करया करूगी?
1: यात्री सेवां ध्यान देन, हुण असीं उड़ान भरन लगे आ।
2: ते उधरों ड्राइवर ने आके क्या करना?
3: 500 झूठी बोली जानी उड़ान भरन लगे आ, हजे तां ही धक्का ला के प्लेन नूं स्टार्ट करन लगे आ।
2: एक अनाउंसमेंट होर होया करनी आ।
0: ओ केड़ी?
1: कृपया यात्री ध्यान देन, जिन्हां ने रब दा नाम लेना ले सकदे ने, जिन्हां दी कुर्सी दी सीट बेल्ट टुटी हुई है ओ नाल दे यात्री नूं फड़ के बह सकदे ने। कुछ यात्री सीट बेल्ट ना होने कारण डर रहे ने, पर तुसी चिंता ना करो, साडे कर्मचारी तुहाडे लई रस्सी दा इंतजाम कर रहे ने।
0: शाह जी जदों रोडवेज वाले प्लेन पाउणगे ए रनवे भी तां डबल ही बनाउणगे।
2: ना ना ना, रनवे सिंगल ही होना।
0: रनवे सिंगल होना? फिर ए दसो ए प्लेन चढ़ाया तां लाया किवें करणगे?
2: लै जिन्हें प्लेन टेक ऑफ करना उन्हें सज्जे पासे दा इंटीग्रेटर ला दिया करना, जिन्हें लैंड करना उन्हें सज्जे पासे दा इंटीग्रेटर लगा दे के दूजा प्लेन खब्बे पासे ला दिया करना।
0: जे पोटरी साहब कोई टेक्निकल खराबी करके इन्हां दा प्लेन टेक ऑफ करदे करदे रनवे ते डिगया करना, फिर अनाउंसमेंट किवें होया करनी है?
1: असी तुहाडे कोलों माफी चाहने आ, तुहाडे नाल नाल हुण असी भी तकलीफ चलांगे, हुण साडा लिंक टुट चुका है, इस करके बाई रोड ही चलांगे।
0: चलो मन्निया पोटू शाह जी, गलती नाल इन्हां दा प्लेन रनवे ते डिग गया, पर जे कोई होर प्लेन उपर जाके टेक ऑफ करिया करूगा, बदलां विच फस के हिलिया करूगा, फिर इन्हां दी अनाउंसमेंट किवें होया करूगी?
4: अपनी अपनी कुर्सी दी पेटी बन लो, हुण असी खराब मौसम चो गुजर रहे हां। ते काके पंजाबियां दा तेनू पता ही है, उन्होंने थोड़ा जा सफर कड के पेटियां फिर खोल लिया करनिया, अनाउंसमेंट फिर होया करनी। कृपया तुहानू कहा अपनी अपनी कुर्सी दियां पेटियां बन के रखो, हुण असी खराब मौसम चो गुजर रहे हां।
0: पोटू शाह जी ए तां तुहानू पता है कि मौसम कुदरत दे हाथ है, किसी वेले भी खराब हो सकदा है। जदों मौसम बहुत ज्यादा खराब होया करूगा उदो अनाउंसमेंट किवें होया करूगी?
2: उदो अनाउंसमेंट ए नहीं करया करूगी, प्लेन च उठ के बाऊ किया करूगा, हुण तुसी अपनी अपनी कुर्सी दियां बेल्टां खोल दियो, क्योंकि हुण असी हमेशा वास्ते गुजर रहे हां।
5: खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हरमन रेडियो।

0: चाचा जी जे तुसी अपने आप नू इन्ना चतुर समझदे हो ना स्वाद ता है जे कौन बनेगा करोड़पति विच जाके करोड़ रुपया जीत के लियाओ।
1: ओए बीबा मैं ना जीत के लिया मेरा मुंडा लाया गल ता इको ही आ।
2: चाचा जी उन्हें 15 दे 15 सवाल सही दसते।
1: हाँ ओ भी बिना किसे लाइफ लाइन दे। अमिताभ बच्चन कहिंदा भई ये पहला शख्स है मेरे प्रोग्राम दा जिने बिना किसे जीवन रेखा दी मदद तो करोड़ रुपया जितया। भई धन ने ओ मां बाप जिन्ह ने तेनू जमया। काका की मैं तेरे पिता जी दा नाम जान सकदा।
0: फिर की कहिंदा।
1: आ कहिंदा जी लाइफ लाइन यूज कर सकदा। कहिंदे केड़ी लाइफ लाइन यूज करनी आ। पतंदर ने मेरे नाल गल करनी उचित नहीं समझी सगो कहना बठिंडे मेरी बेबे नाल गल कराओ जी फोन ते। लो जी फोन बठिंडे सीधा आत्रो दे घरे जा वज्जिया। अमिताभ बच्चन कहिंदा आत्रो जी मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा।
2: फिर चाची की कहंदी।
1: कहंदी बू मैं मर गई 70 साल का होके हे तक बोली जाना। कहना जी अगली बात थोड़े मुंडे दी आ। मुंडा कहना बेबे 30 घंटा दे अंदर अंदर मेनू मेरा बुढ़ा जा ना दस दे की आ।
0: फिर चाची की कहंदी।
1: ओ कहंदी पुत 30 घंटे दा बहुत ज्यादा ने मैं 2 सेकंड के दस दूं पर पहला लंबू नू कहता सही के डब्बियां दिखा के 4 ना ता भरे केड़े केड़े ने।
2: पर चाचा लान ते हजे करोड़ रुपए दे इन्नी गल सुन के तेरा मरन नहीं होया।
1: मरन क्यों नहीं होया भतीज पर इन्नी गल सोच के फिर सबर कर लिया।
0: केड़ी गल
1: भाई माण इज्जत सांझा बेइज्जती अपनी अपनी।
3: Radio 24/7.

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: एक फरियाद सुनी मेरे मालका, बीते साल दियां चंगियां माड़ियां यादां बस यादां ही रहन, इस साल सबनों खुशियां भरिया नसीब होवे। मेहर इन्नी कु करी मेरे मालका, इस साल ना कोई भुखा ना कोई गरीब होवे। नवे साल च सब की जिंदगी खुशहाल होवे, ना किसी नु कोई दुख होवे ना कोई तकलीफ होवे। हे वाहिगुरु जी, सब नु चंगी सेहत तंदुरुस्ती बख्शी मेरे मालका। नवा साल सब नु बहुत बहुत मुबारक होवे।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे सत्ते दे
2: वतना दी सुख लई सरहदा उत्ते खड़दे वैरियां ना लड़िए हालातां ना भी लड़दे बरूद दियां ढेरां नाल नित दा ही फौजियां दा वाह हुंदा ए जे जख्मां ना हुंदी साडी मंगणी शहादतां ना फौजियां दा व्याह हुंदा ए कदे बर्फां कदे अग्गां च उत्तर हुंदे ने रोज भैड़ी मौत दियां बुकलां च किन्ने ही पुत्तर हुंदे ने जद बंबा गोलियां अग्गे हिक्कां डेंदियां एक कदम ना फेर पिछां हुंदा ए जे जख्मां ना हुंदी साडी मंगणी शहादतां ना फौजियां दा व्याह हुंदा ए मजबां दे रौलियां तो कोहां दूर बड़े ने मजबां दे रौलियां तो कोहां दूर बड़े ने सरफरोशी की तमन्ना दिली जनून बड़े ने वतन लई योधे दिंदे ने कुर्बानियां भाईचारे रख ही फर्ज निभा हुंदा ए सब दा इको रब इको ही खुदा हुंदा ए जी जख्मां ना हुंदी साडी मंगणी शहादतां ना फौजियां दा व्याह हुंदा ए अखां सामें वीर शहीद हुंदे बार्डरां दे उत्ते फेर भी उडीक साडी सरकारी आडरां दे उत्ते गुरमेल ताली वाला लहू उबाले हुंदा मारदा गुरमेल ताली वाला लहू उबाले हुंदा मारदा पर सरकारां हथ बने कोई ना राह हुंदा ए सियासतां दी बली नित चढ़दा कोई भरा हुंदा ए जे जख्मां ना हुंदी साडी मंगणी शहादतां ना फौजियां दा व्याह हुंदा ए जी जख्मां ना हुंदी साडी मंगणी शहादतां ना फौजियां दा व्याह हुंदा ए।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग
1: ना अग नाल खेडो पालो ना नाग जहरी ना अग नाल खेडो पालो ना नाग जहरी ना बचेगा मदारी ना बचेगा स्पेरा।

आलस बारे भारत की कहावत है कि सुती बिल्ली चूहे नहीं फड़ सकती। विद्या विचारी ता पर उपकारी।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: अखां दियां पलकां पिचियां रहिंदियां, रो रो के हाल दिल दा कहिंदियां, उच्चे दरवाजे सब लंघ जांदे, नीवियां दियां छत्तां सिर नाल पैंदियां, एक यार ना मन्निया बिना हंजुआं तों, दिल दियां सदरां पिंजियां रहिंदियां, दिल दियां सदरां पिंजियां रहिंदियां, डोलदा क्यों आ प्राणियां, जदों होवे उसदा सिर उत्ते हथ, जिन्ने दिखाउणी दुनिया ओह देंदा नहीं कोई खत, रब नाल मिलाप ता उस दे हुंदे, जिस दियां जीबां नाम जपदियां, नाल दमन भिज्या होवे फिर अरदास च अखां दसदियां। बुल्ले शाह जिथे हकीम दी दवाई कम ना करे, उत्थे तेरी अरदास कम करेगी, सच जिस दियां जीबां नाम जपदियां, नाल दमन भिज्या होवे फिर अरदास च अखां दसदियां। बुल्ले शाह जिथे हकीम दी दवाई कम ना करे, उत्थे तेरी अरदास कम करेगी, सच्चे मन दा जाप ही तेरी

0: अड़के डिगन हन जो खास तेरी याद च डिगे हन जो मेरी रख दे निगाह नु साफ पाटे कपड़े दुनिया देखे तू देखे तन नु साफ चिक्कड़ ता फिर चिक्कड़ हुंदा जिस दी तोत्या मुश्क न जावे तेरे कर्मा दा लेखा चंगा नहीं भुलिया ओ फिर भी गल न लावे बुले शाह तेरी बंदगी तो वड्डा कोई तीरथ नहीं ना जाप तो वड्डा कोई इशनान अखां रोवन तोवन दाग तकदीर दे ना अरदास तो वड्डा कोई नाम बुलिया जदो दुख दे पल्ले हो जन पारे तू हंजो बन के डिगदा स्वर्ग दी नगरी नू कोई विरला जावे जेड़ा तेरी बंदगी विच पेचदा बुलिया लखां खसमां दे तीर्थ नहावे तैनू फिर भी सुख दा सा ना आवे उसदी बंदगी तीर्थ वर्गी जेड़ा नहावे बिना स्वर्ग तो बाहर ना आवे बुलिया बंदगी दे मुल उत्थे पैंदे जिथे साहां च वसदा यार होवे कर्मा दी फिक्र क्यों करता बंदिया जदो कर्म लिखन वाला रब आप होवे बुलिया रिश्ते हो गए हुन किताबी पन्ने पन्ने ते कोई मतलब ही बैठा जिस किश्ती च कोई मलाह नहीं हुंदा ओह आप किनारे राखी बैठा ओह आप किनारे राखी बैठा।
1: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।

0: अर्बन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: हाय, आई एम उदित नारायण एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू हरमन रेडियो।

ऑस्ट्रेलिया आ गए ईस्टर दे क्रिसमस जो गई रह गए अपने त्योहारा नु भी याद रखो सुनो हरमन रेडियो नु ते जुड़ो अपने विरसे नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो
3: सैड जा रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो

जेवफा करके भी ऐसी बेवफाई कहाँ है, जेवफा करके भी ऐसी बेवफाई कहाँ है। उन लख तरले भी कर लेगा ना सजना, उलके भी तेरे कुल वापस ना आए।

0: 24 घंटे 7 दिन।
1: नदियों पार मेरे माही दा डेरा, मैनू भी लै चल पार कड़िया। वेखण नू तुम्हें नैन तरसते, मिल तई दिलदार कड़िया। नीवा नीवा क्यों हुंदा जावे, दरिया ठठा मारता है। बेवफाई नहीं करनी चाहिए, खड़के अत विच घर कड़िया। नदियों पार मेरे माही दा डेरा, मैनू भी लै चल पार कड़िया। वेखण नू तुम्हें नैन तरसते, मेल तई दिलदार कड़िया। बन साथी अज साथ ने पाई, रो रो के सोनी पुकारती सी। यार मिलावी ना खुर जावी, आखा में अर्ज गुजार कड़िया। नदियों पार मेरे माही दा डेरा, मैनू भी लै चल पार कड़िया। वेखण नू तुम्हें नैन तरसते, मेल तई दिलदार कड़िया। जीवन कुठरी आज ज लुठरी, आ गई अजल वाली तार कड़िया। नदियों पार मेरे माही दा डेरा, मैनू भी लै चल पार कड़िया। वेखण नू तुम्हें नैन तरसते, मेल तई दिलदार कड़िया। मेल तई दिलदार कड़िया।

0: Mormon Radio 24/7.
1: सानू दिलों भुला के तुर गया, पत्थर दिल ठुकरा के तुर गया। सानू दिलों भुला के तुर गया, पत्थर दिल ठुकरा के तुर गया। रोल तुर गया जिंद निमाणी, हंजुआ विच वहा के तुर गया। लै गया चंद्रा खुशियां सबे, दुखड़े झोली पा के तुर गया। ला गया रोग उमर दा वैरी, आपदा मौज मना के तुर गया। कोमल दे मेरी कलियां वर्गी, पैड़ा पत्थर बना के तुर गया। अखां वेंदियां राह उहदा अज वी, चंद्रा लारे ला के तुर गया। ओ अज आउंदा ओ कल आउंदा, झूठी आस लवा के तुर गया। भज्जे जावां वल बरूहां, लगे सज्जन आके मुड़ गया। फेर ना पैंदी नींद रखी, जद सुपने विच जगा के तुर गया। इस दिल नू की मैं देवां तसल्ली, आप ता मन समझा के तुर गया। मर जाना खनी किथे होना है, दीप दिलों भुला के तुर गया। रहे वसदा रब्बा जिथे भी हो, जेड़ा सानू अजमा के तुर गया। सानू दिलों भुला के तुर गया, पत्थर दिल ठुकरा के तुर गया।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: शायरी की गल करिए, साढ़े समय के बहुत उमदा शायर गुरभजन गिल होना दे नाल एक खास गलबात दे विच उन्होंने ये शेर साझा किया सी, लो थोड़े नाल भी साझा करते हैं। सुख की छां ने वेख कमीना किन्ना सानू कर छड़िया, सुख की छां ने वेख कमीना किन्ना सानू कर छड़िया, फिरन गुआचे पग ते चुन्नी हुण साढ़े किरदार दे अंदर।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: तैथों बंदिया पंछी चंगे, ना किते लुट्टा ना किते दंगे। तैथों बंदिया पंछी चंगे, क्योंकि
0: अते पुराना गी।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: तैथों बंदिया पंछी चंगे, ना किते लुट्टा ना किते दंगे। तैथों बंदिया पंछी चंगे, क्योंकि ना ए वंडन तरती पानी।

0: ना ए पींदे बहके ठेके और ना कोई तुत घराच वेचे ना कोई सौरे ना कोई पीके अपने रंग विच रंगे तैथों बंदिया पंछी चंगे ना ए गंदे सुनते गाने ना ए कोठी पौंदे दाने ना ए वस्त्र लौन पुराने कदे ना देखे गंदे तैथों बंदिया पंछी चंगे कर बनाओ दे रख रख दीला ना कोई कर विच तवा पतीला ना कोई मुन्नी ना कोई शीला ना सौन नो मंजे तैथो बंदिया पंछी चंगे तेरी बंदिया मत क्यों मारी एह भी चंदे जून गुजारी सभ्या चार नो फिर गई यारी सुट ते शीशे कंगे तैथो बंदिया पंछी चंगे तैथो बंदिया पंछी चंगे।
1: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल
2: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

उमरा जिना गवाइया तरबा कसदिया उमरा जिना गवाइया तारा कसदिया सिखदिया ते चंगिया गल्ला दसदिया लोकी कहिंदे गल नहीं बनदी ओ।

सुनो भी दोस्तों, सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो या फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो या फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो या फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तो चाहे पिंडा विच बसते हो या फिर बसते हो पिछे शहरां, हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: सैड जा रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो
1: नाले थोड़ा जेहा रख तू काम के अमवे सब छड़ के
0: हर रोज शाम 8 से 11 तक सीनी समय के अनुसार।

अध्यापकों बारे एक विचार ए है, सच्चे अध्यापक अपने आप नूं पुलां वांग वरतदे हन अते अपने विद्यार्थियों नूं अपने उपरों पार लंघ जाण दा सद्दा दिंदे हन। उन्हां दे पार लगाण नूं सौखा बनांदे होए आखिर खुशी खुशी ढेर ढेरी हो जांदे हन तां कि अगे ओ अपने पुल उसार सकन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

देश मत छा, सज्जन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमरी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला, कति आ मिल सांवल यार वे, कति आ मिल सांवल यार वे, मेरे लू लू चीख पुकार वे, ते ओ कति आ मिल सांवल यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आसना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आसना पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, कुछ हर चाई की बाहों में, कुछ यार फरीद की राहों में, ओ कुछ हर चाई की बाहों में, कुछ यार फरीद की राहों में, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, ओ कदे मिला सावल यार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: जान बचा के निकले कई हो गए टूटे टूटे, जान बचा के निकले कई हो गए टूटे टूटे, खुरलियां उत्ते डंगर बच्चे रह गए खड़े खलोते। जान बचा के निकले कई हो गए टूटे टूटे, खुरलियां उत्ते डंगर बच्चे रह गए खड़े खलोते। ना कुछ चुको नाल बचा लो जान, ते सब कुछ इत्थे ही छोड़ दियो। सन संताली दा गुम होया मेरा बापू मोड़ दियो, संताली वेले दा गुम होया मेरा बापू मोड़ दियो। धी किसे दा पुत किसे दी अम्मा सी कर लाउंदी, पांच पानिया दे विच उदों जहर सी गोते लाउंदी। धी किसे दा पुत किसे दी अम्मा सी कर लाउंदी, पांच पानिया दे विच उदों जहर सी गोते लाउंदी। लखां दिल सी टुटे हाड़ा हुण तां जोड़ दियो, संताली वेले दा गुम होया मेरा बापू मोड़ दियो। सन संताली दा गुम होया मेरा बापू मोड़ दियो। ढेर लगे सी लाशां पईयां, रामदेव कोई हाकम खां दी आखे, हिंदू मुसलम कोई ना दिसिया सब बंदे ही जापे। ढेर लगे सी लाशां पईयां, रामदेव कोई हाकम खां दी आखे, हिंदू मुसलम कोई ना दिसिया सब बंदे ही जापे। जिहाद ना होवे होर कदी, मन चों कढ करोड़ दियो, संताली वेले दा गुम होया मेरा बापू मोड़ दियो। संताली वेले दा गुम होया मेरा बापू मोड़ दियो। यार पुराने नंगले वाले पिंड दे चेते आउंदे, की करिए हुण जा नहीं सकदे सिद्धू होरी बुलाउंदे। यार पुराने नंगले वाले पिंड दे चेते आउंदे, की करिए हुण जा नहीं सकदे सिद्धू होरी बुलाउंदे। डर लगदा ना फुल्लां वांगू धौण मरोड़ दियो संताली वेले।

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी
1: जालम कहन बुलावां हुंदियां कुड़ियां तां कवतावां हुंदियां कर्ज इना दे कौन उतारे रब तो वध के मावां हुंदियां।

जापान दी एक कहावत अनुसार जद तक थोड़े चुल्ले च अग रहेगी उदों तक मेहमान आन तो नहीं हटणगे। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: टॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले पावा, बुल्ले शाक ते मिल पाए सोना, उन्नो रो रो दिल दा हाल सुनावा।
3: Harman Radio 24/7.

0: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते।
1: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़ा अपना वीर सिंह, तुम सुन रहे हो हरमन रेडियो, दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: शीशे उत्ते तूड़ा जमिया कंधा चाड़ी जंदे ने जिलदा सांब रहे ने चले वरके पाड़ी जंदे ने ओना ता भी तुई हो रब है एता अज जवाब दिते एता वाले दिन वे जेड़े करन तिहाड़ी जंदे ने जिन्ना ते कल लीरा पिया उन्ना वल्ल तकदे नहीं कबरा उत्ते तिले जड़िया चतरा चाड़ी जंदे ने रस्सी कित्थों तीक करेंगे टेली उन्ना लोकां दी जेड़े एक हवेली बदले चुकियां साड़ी जंदे ने शीशे उत्ते मले स्याहियां हक है मेरे दुश्मन दा सजना नोकी की बनिया मेरे फुल लिताड़ी जांदे ने चल ओए पापा नसमी अपने पिंड नो मुंह मोड़ लईए शहर ते वसनीक दा अपने शहर उजाड़ी जांदे ने अपने शहर उजाड़ी जांदे ने।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: तुसी आनंद माण रहे हो पुराने गीतां दी महफिल दा।

आयरलैंड की एक कहावत अनुसार इटा ते सीमेंट मकान बनाते हैं पर बच्चों का हासा इस नूं घर बनाता है। लेखक परमिंदर सोढ़ी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: पहरावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। बुड्ढा चोर मसीते डेरा।
1: भाव ए है कि जदो कोई बंदा कम करन तो असमर्थ हो जावे ता ओ रब दी भक्ति करन लग जांदा है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले पंजाबी बोले। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਮ ਬੀ ਸੱਗੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ, ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੰਜਾਬੀ।

0: हरमन रेडियो नो तुसी कई तरीके दे नाल सुन सकते हो। एप्पल ऐप स्टोर तो तुसी आईफोन आईपैड अते आईपॉड टच ले हरमन रेडियो सर्च करो। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ते तुसी गूगल प्ले स्टोर तो फ्री डाउनलोड करो। ब्लैकबेरी नोकिया अते विंडो मोबाइल ले तुसी ट्यून इन ऐप डाउनलोड करके हरमन रेडियो सर्च करो। harmanradio.com ते भी तुसी सुन सकते हो। कोई भी वाईफाई रेडियो सेट ते भी साडे चैनल उपलब्ध हन।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: जी दबी चलो कम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
1: Bangles.

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा सस्से नी मैं थकी छड चरखा ते लै चक्की।
1: जदों कोई कम करदा करदा थक जावे ते आराम करन दी आस करे, परंतु चलाकी नाल उस नू पहले नालों भी औखा कम करन नू सौंप दिता जावे, उदों ए अखाण वर्तदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया,
2: आस्ट्रेलिया। हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हां सुवी महेंद्रू ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया। दिल पंजाबी जस्ता पंजाबी।

0: कोशिशा सदा रही ने कि कुछ अजिहा करिए कि साडे अपणिया नू सदा माण रहे तुहाडे संग तुहाडे तो तुहाडे लई ही सदाए आवाज है। बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करना अजे बाकी है। आओ इस काफले संग दियो सानू सहयोग, तुहाडी हाजरी साडे लई मायने रखदी है। तन मन धन नाल इस प्रवास दे सारथी बनो दोस्तो। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नू हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहानी आवाज पंजाबी नू स्पोंसर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

गावांगे मन चाहे कसी गीत सुनावांगे हर मन रेडियो ते।

पैसे बारे अरब दी एक कहावत अनुसार खाली डब्बे च पिया एक सिक्का भरे डब्बे नालों ज्यादा शोर करता है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਟੌੜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
1: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित्य विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझाव देण लई यूट्यूब पर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
2: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

रीति रिवाज बारे फिलीपीन दी कहावत है कि हर समाज दे अपने रीत रिवाज हुंदे हन। विद्या विचारी तां पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: कि दर्दे दिल की दवा न हो जाए, ये दुआ बद्दुआ न हो जाए। कि दर्दे दिल की दवा न हो जाए, ये दुआ बद्दुआ न हो जाए। जख्म भरने लगे हैं यादें सनम, फिर से तू मुद्दुआ न हो जाए। इश्क दारो रसन पे झूम जरा, जब तलक तो खुदा न हो जाए। एक लम्हा विशाल ही आलम, उम्र भर की सजा न हो जाए। एक लम्हा विशाल ही आलम, उम्र भर की सजा न हो जाए।
1: तो हाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे अति गीत सुनावांगे। हर मन रेडियो जी।

0: एस्टोनिया दी पैसे बारे एक कहावत अनुसार बंदा पैसे मगर हुंदा है पर पैसा उसकी आत्मा मगर हुंदा है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: जेड़ा तुरदा नवाबा वाली तोर राणी ओनू पट कि लैजू कोई होर दस दे।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, सप दा डंगिया रस्सी तो भी डरदा है।
1: जदों कोई बंदा एक बार धोखा खा जावे तां ओ अग्गे तो हर काम सुचेत होके करदा है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया,
2: आस्ट्रेलिया। मैं हां जयदेव कुमार, दोस्तों तुसे सुन रहे हो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: एक मिनट रखो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।
2: चाचा जी जे इना प्यार सी आपस विच फिर नीलू दे दादा जी दादी नु छड़ के इन्हें तेरे फौज के नौकरी करे।
3: एनएच नु पढ़ा उथो पेंशन लेके मुड़िया सी बारो बार भज आया सी।
4: हां हां कौन कहंदा बारो बार भज आए सी। कल्ले जणे बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मना ते हमला करके आए सी।
2: जे कल्ले गए सी फिर तो खासा असला नाल ले गए होने।
3: असला उसला कहदा सी अभी पांच चार नींबू नाल ले गया सी।
2: नींबू कादे ली।
3: कहना दुश्मना दे दंद खट्टे करन चलिया।
2: फिर करते
3: दंदा ना ता पता नहीं खट्टे कीते कि नहीं कीते पर अपने मेजर नु पीछे वायरलेस जरूर करती। कहना साहब जी मैंने अकेले ही दुश्मन की पांच चौकियां फना कर दी। वेरी गुड मैंने अकेले ही उनके 50-60 जवान हिरासत में ले लिए। एक्सलेंट ऐसा करो उन सबको बंदी बनाकर वापस ले आओ। कहना जी आ नहीं सकता। क्यों? कहना जी आउ नहीं दंदे।
2: फिर वापस क्यों आया?
3: ओता कुदरती एदी दादी चरदी चरदी बॉर्डर क्रॉस कर गई। ओदी निगाह पै गई। उन्हें समझाया जी फौजी फूजी कोई नहीं एवी सिधरा जिया तां कि जाके घरे आया।
2: चाचा जी जेड़े नाल नींबू लै गया सी उन्हां दा की बनिया?
3: बनना की सी सारा टब्बर हुण तक सिकंज भी पींदा। आज सिकंज भी तो याद आया कुड़िए कुट पानी दिए पड़ा दे झाकी जानिया कौड़ कौड़। चल फोके पानी नू मार गोली सात सौ खड़ी होनी ओनू बुला के पूरा मिल लिए करा दे।
4: जिदा दिया थोड़िया आदतां ने ना ओ मिलना ता एक पासे थोड़े वर्गे वाल झाके भी ना।
3: ओए तू एक बारी लिया के कुड़मणी कोलता बिठा दे झाकी ता असी आपे जावांगे।
4: जे अपने नहीं ते कम से कम मेरी सास दे तौले झाटे दे ता पूरा लिहाज कर लो। उठिया उत्तो ना जावे बैठिया उत्तो ना जावे।
3: भाई चल पाई दे दर्शन करा दे। भला नीलू तेरी सस दे दंद हैगे आ?
4: क्यों तुसी की लेना?
3: मैं ओदे चुपड़ लई गंढेरियां लेके आया सी।
4: दंद पाल दे है इस उम्रे माड़ी मोटी निगाह रह जावे ओ थोड़ी है।
3: ओए तू बुला ता सही निगाह नु मैं कहना ओदे कोल कुड़ते दे काज कराउणे आ। पता छेड़छाड़ मैं करनी आ तफे वाले दे पौणे आ।
5: हरमन रेडियो तुहाडे नाल 24 घंटे 7
6: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

फुकरे वाले डेनिश दी कहावत है कि मुर्गा अक्सर बिना किसे जित दे ही वांगा दे ही जांदा है। सुने विचारां दे अंग

0: तेरी मुंदरी तांबे दी, तेरे दित्ते तोहफे मेरे तो सांभे नहीं जांदे। अज फेर एक वारी अंदर वड़ के बूहा लाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। उस दे विच ता अज तक तेरिया यादा घूमदिया ने, हर कोने विच नव कहंदी दी आवाजा सुनदिया ने। खब्बी अख चो एक वार फिर अज अथरू आया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। मेरे लिए ता अड़िए नी तू ही सब तो चंगी है, अजे ते केली उत्ते तेरी चुन्नी टंगी है। उत्थे बैठ फिर तेरे पसंद दा गीत चलाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। कंध पुराणी दी खुड विच जो बालियां रखिया सी, तीन साल हो गए ने अज ना किसे वो चकिया ने। चमक चली गई पर रंग ओदा दा ओदा पाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। तू ही ताए मांगट वाले दे दिल दी राणी नी, तेरी मेरी जग उत्ते बनू कोई कहानी नी। नव चंद्रे ने ता तेनू नी रूह तो चाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। तेरा दिता होया अज मैनू एक खत भी दिसया है, जिदे उत्ते वड्डा करके तू लव यू लिखया है। ओनू चख उठ जाके चुल्ले दे विच लाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है।
1: गावांगे मन चाहे कभी गीत सुनावांगे हर मन रेडियो से।

हिम्मत दे संबंध विच दो संसार प्रसिद्ध कहावतां मशहूर हन। वेंज बेला वाले कहंदे हन, डरपोकां कोल सुपने हुंदे हन, हिम्मत वालियां कोल नजर हुंदी है। ते जापान वाले कहंदे हन, सत बारी डिगो ते अठ बारी उठो।

0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। ए जग मिठा अगला किन डिठा।
1: इसदा मतलब है कि इस जग विच चंगा खा पी लो, अगला जहान कीने वेख्या है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। पंजाबी बोले हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।
2: सूलां उत्ते सौंके तैनू जश्न मनो।

सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हां तुहाडा अपना राज काकड़ा। हरमन रेडियो पंजाबीयत दी पंजाबी दी बहुत बहुत सेवा कर रहा है, इहदे लई इह वधाई दे पात्र ने। मैं इन्हां दा बहुत थैंक्स करदा कि इह नवें नवें लोकां नूं तुहाडे रूबरू करदे ने ते करदे रहणगे। मेरे वल्लों दिल दीआं गहराईआं चों इन्हां नूं बहुत बहुत लख लख

0: असले जो हल करे मसले जो छोट ने मजट धब लै गया छोट रखे असले जो हल करे मसले जो छोट ने मजट धब लै गया
1: नंबर लिया मैं लहाऊ जमा कार्ड कदाली छब्बी चलिंजा बन ला भी ठीक है ये तो सीटो सानू सने जरा दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़क ऐसा सीटो सोने
2: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुम आहा टॉप गीत
3: मूरे ना बना जाता पिछे छड़ी जाता।

बड़े मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

योग्यता बारे सियाने कहंदे हन कि अयोग्यता साडे दिमागां च कड़ियां हद्दां चों पैदा हुंदी है। विद्या विचारी तां पर उपकारी,

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा ऊठ चाली ते बोता पंताली।
1: जदों किसे वड्डी ते वधिया चीज दे टाकरे ते छोटी ते कटिया चीज दा मुल पाया जावे उदों ए अखाण वर्तदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

मुहावरे बारे अरब दी कहावत है कि जिमे लून भोजन लई तिवे मुहावरा बोली लई। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: सदी का यह भयानक ते विचित्र हादसा है। यह सदी का एक भयानक ते विचित्र हादसा है। मोढ़ियां ते सिर तने पर सोच सिर तो लापता।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे। हर मन रेडियो ते।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां, ना हाड़ सुके ना सौन हरे।
1: जदों किसी मनुख दे जीवन विच किसी प्रकार दी तब्दीली ना आवे उदों ए अखाण बोलदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

नमस्कार, मैं हूँ सनी देओल और आप लोग सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी स्टेशन हार्मन रेडियो। सुनते रहिए क्योंकि मेरे पापा भी सुनते रहते हैं। थैंक यू।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकदे हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149499। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।
2: जंगल भी देख

0: मैं तेरी सरगी विच इशनान करके हटिया हां, मैं तेरी सरगी विच इशनान करके हटिया हां। तेरी उड़ीक विच मैं उही वस्त्र पहन के बैठा जो मैनू जन्म सनम समय मिले सन। तेरी उड़ीक विच मैं उही वस्त्र पहन के बैठा जो मैनू जन्म समय मिले सन। मैले वस्त्रा नाल तेनू किवें उड़ीक सकता। तेरा हाथ सूरज दी पहली किरण विच आवेगा ते मेरी नंगी देह नू शो जावेगा। देह दे रोम रोम अंदर बैठी इंद्री थरथरा उठेगी। गीता कहंदी है इंद्रियां तो परे मन दी दुनिया, मन दियां सेवावां तो पार बुद्धि, मन दियां सीमावां तो पार बुद्धि, बुद्धि तो अगे आत्मा है। मैं कहंदा आत्मा तो अगे आद जनक है, जिस चो आत्मा जन्मदी है ते सृष्टि दे अणु अणु विच वंडी जाती है। तू आ तेरी शू दी तेरी शू दे जग दे बुझदे अणुआ विच आद जनक। तू आ तेरी शू दे जग दे बुझदे अणुआ विच आद जनक है ते मेरा आद अंत भी, ते मेरा आद अंत भी। उत्तम होन कोई नहीं पुछदा कमजोरां ते अपाहजां नूं। घबराओ ना इस मौत तो क्योंकि जो प्यार दी मौत नहीं मर सकता वो एक तुरदी फिरती लाश है।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਜੀ।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा
1: आखां ती नू सुनावा नू नू। इस दा मतलब है कि जदों किसे नू कोई गल असिद्धे रूप च कही जावे।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: केड़े मंत्री ने किया एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब ना सानू जानू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल ते सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: चार जी वैगनानी उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू थ

0: असीं दिल छड गए होइए अजिहा भी नहीं लगदा। असीं दिल छड गए होइए अजिहा भी नहीं लगदा। पता नहीं फेर क्यों साडा किते भी जी नहीं लगदा। कदे लगदे ने तारे फुल पंछी अपने वर्गे, कदे शीशे च अपना अक्स अपना ही नहीं लगदा। किवें इक नाम दईए इस च सब रिश्ते समोए ने, लहू विच दर्द चो कुलिया साडा की नहीं लगदा। कि किस नूं जग रही हर चीज चो सूरज नजर आवे, किसे नूं जग रही हर चीज चो सूरज नजर आवे। किसे नूं पुन्या दा चन भी असली नहीं लगदा। जदों तक होश आउंदी कुछ नहीं बचदा संभालन नूं, पता मुठी चुकिरदी रेत दा छेती नहीं लगदा। छिड़े जद कंबनी खाबां च उस वेले समझ आउंदी, कि पाला सिर्फ खुलियां बारियां विच दी नहीं लगदा। कड़ी विच नुक्स है जा वक्त ही बेवक्त हो चलिया, कड़ी विच नुक्स है जा वक्त ही बेवक्त हो चलिया। सवेरा हो गया पर दिन ता चढ़िया ही नहीं लगदा। सवेरा हो गया पर दिन ता चढ़िया ही नहीं लगदा।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे। हर मन रेडियो।

यात्रा बारे अरब की कहावत है कि लंबियां लत्तां वाला सफर जल्दी पूरा करता है। सुने विचारां ले सुनते रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे।

0: अमृत वेले दी तान मनुखता दे अर्थ कहंदी बाणी
1: तू कब दाता दान मत
0: हर शब्द देवे जदो जिंदगी नू आसरा फिर शुरुआत होवे सुहावनी रोजाना प्रोग्राम दलजीत सिंह होना दे नाल हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे संग।

अरदास। किरना बांगर नंगे हो इक अंगे इक रंगे हो पावन जमना गंगे हो रावी चना तरंगे हो नेमन सूड़े जंडे हो गुंदे फुल कदंबे हो गिरी गवर्धन कंगे हो बेड़ी साहिब कंडे हो सरपा मणिया चंदे हो वन तित्तर दे खंबे हो मूल सवास मकंदे हो सूड़ी ते लटकंदे हो पीड़ा बजदे कंडे हो अगन कुंड पर चंडे हो अर्क बर्क सहरंगे हो हर चंदन पर संगे हो खाकी पोष पतंगे हो बल बल मरे पतंगे हो तू ते मैं जगदंबे हो चंगे हो मंदे हो आपा मिलिए बंदे हो आपा मिलिए बंदे हो।

किसी महापुरख की वड्याई वेखनी होवे ता उस दे जीवन दे इना पक्खां वाले जरूर देखो। उसका परिवारक जीवन की है, उसका व्यवहारक जीवन की है, उसका समाजिक जीवन की है, उसका धार्मिक जीवन की है। कई सज्जन ऐसे हैं उन्हां दा अपने परिवार नाल वतीरा ठीक है पर परिवार पालन वास्ते बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, ठगी करते हैं। उन्हां दा व्यवहारिक जीवन ठीक नहीं। कई सज्जणां दा परिवारिक जीवन ठीक है, व्यवहारिक जीवन भी ठीक है पर उन्हां दी समाज नाल नहीं बनती। समाज उन्हां ते प्रसन्न नहीं, उन्हां दे कर्म समाज विरोधी हुंदे हन। कई बंदे ऐसे हन परिवारिक जीवन भी ठीक है, व्यवहारिक जीवन भी ठीक है, समाज विच भी इज्जत है पर धार्मिक जीवन नहीं। परमात्मा दे नाम तो विहूणे हन, इसे करके उन्हां दे परिवार दे विच व्यवहार विच बरकत नहीं, उन्हां नूं सुख नसीब नहीं हुंदा। विचार यानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए।
1: शहीदी दे के ऐसी खुद नु भी हैरान करदा हां, शहीदी दे के ऐसी खुद नु भी हैरान करदा हां, मैं अपने शीश नु सिर वास्ते कुर्बान करदा हां।

अज भी बड़ा चंगा होवे के बाणा धारण करन तो पहला ही सिख दे अंदर बाणी वसी होवे। तुरदियां ही पता लगे के ओ सिख बाणे वाला जा रहा है जिस दे अंदर सतगुरु बाणी दे रूप विच है ते बाहर बाणे दे रूप विच। गुरु दियां सिफतां नाल साडा प्रेम बने फिर सानू गुरपुरबां ते ए आवाज़ां ना देणियां पैणगियां के सतगुरु एक वारी फिर आ जा। गुरु दे दर्शन करन वास्ते बाहर ना भटकना पवे सगों दीदार खालसे दा ए वचन याद आउणगे ते गुरपुरब मनाण आए गुरु दे सिखां विचों ही गुरु दे दर्शन होणगे। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

कलयुग दे इस कोहर समय अंदर आत्मिक सुखा दी प्राप्ति लई अपने आप नु परमात्मा दे चरणा नाल जोड़न वास्ते हरमन रेडियो आप लई रोजाना लेके हाजिर है गुरबानी प्रभात प्रोग्राम, जिस विच तुसी अंदरूनी सुख देन वाली पवित्र बाणी आसा की वार दा कीर्तन, नितनेम दी बाणिया दा जाप, उपरांत गुरबाणी विच पए हुए कीमती हीरे मोती गुरबाणी कथा विचार दा लाहा लवोगे। तुसी रोजाना सवेरे 4 बजे तो लेके 8 बजे तक सिर्फ ते सिर्फ अपने प्यारे हरमन रेडियो राही प्रोग्राम गुरबाणी प्रभात विच।

मैं डुबदे वेखदा सूरज ते चढ़दे चन्न वेखदा इत्थे औकड़ा विच इश्क नूं आनंद वेखदा है जिथे फलसफे तेरे मुकम्मल रूप पाया है किते चमकौर वेखदा किते सरहंद वेखदा है। तन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे लखते जिक्र छोटे ते वड्डे साहिबजादे समूह गुरसिख अते माता गुजर कौर जी दी शहादत नूं कोटानकोट प्रणाम है। आओ उन्हां दीआं महान शहादतां नूं सिजदा करदे होए प्रण करिए और गुरसिखी वाला जीवन जीवन।

इतिहास दसदा है कि हुमायूं बादशाह शेरशाह सूरी पासों हार के जदो पंजाब विच आया ता अनेका फकीरां पासों हुंदा होया ओ गुरु अंगद देव जी दे पास खडूर साहब भी पहुंच गया। राजे जदो ताकत विच हुंदे हन ते उस वेले ता इना नू रब याद नहीं आउंदा, पर जदो उसकी नजर उपट्ठी हुंदी है ता इना नू भटकदे वेखो। फिर इना दी निमरता वेखो किवें फकीरां दे डेरियां ते जाणगे, अरदासां करनगे, पर एक कदी ना भुल के समझ लेना कि राजनीतिक बंदे दी ए निमरता सच्ची है। नहीं, राजनीतिक बंदा इन्ना होशियार हुंदा है कि ओ हमेशा दूसरे नू वरतदा है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

दुनिया भर के कोने कोने विच वसदे पंजाबियां दी दिली चाहत हुंदी है कि ओ हर हिले सिखी दे मुकद्दस स्थान दरबार साहब अमृतसर साहब नाल जुड़े रहन। पंजाबियां दी इस अध्यात्मिक चाहत नूं पूरा करन लई हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया वल्लों सिडनी समय अनुसार रोजाना शाम 5 बजे दरबार साहब अमृतसर तों बख्शिश होए हुक्मनामे दी शब्द विचार ब्रॉडकास्ट की जा रही है। हरमन रेडियो, सबदा रेडियो।

मनुखां ते कुखां दी उस्तत, खेड़े दी बैठक च दुखां दी उस्तत, हवावां दे ढोलक जमीं दे विछौने, के रुत्तां दे लहंगे तिहारां दी उस्तत, रंगां दी उस्तत, आकारां दी उस्तत, ख्यालां च उसरे मीनारां दी उस्तत।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: कीमत किने ना पाइया सब सुन सुनिया के सोए सब सुन सुनिया के सोए। राग श्री राग विचों बाबे नानक दे इन्ना बोलां नाल देश विदेश तो हरमन रेडियो दी मार्फत प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी विच जुड़ बैठिया रब रूहां नूं दलजीत सिंह मेहता चौंक वालों जियो आया नूं सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिडनी आस्ट्रेलिया समय अनुसार अमृत वेले दे पांच बज चुके ने ता आओ अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार गुरु बाबे दे इन्ना पवित्र उपदेशा अनुसार अमृत वेले दे अमृतमई प्रोग्राम दा आगाज करदे हां। गावो सच्ची बाणी जिवें राग श्री राग विच बाबे नानक ने बचन सरवन करवाए ने के भावे हजारां शायर रागी ढाडी कीर्तनिये पाठी उस मालक दे बेअंत गुणां दा गायन करन तामी ए उपराला तिल मात्र है। ता आओ इस तिल मात्र उपराले विच आपां शामल होइए रब्बी उस्तत रब्बी कीर्त गाउन दे इस प्रोग्राम नूं गावो सच्ची बाणी नूं सरवण करिए। सरवण करांगे अज दे प्रोग्राम विच नितनेम दी बाणी जपची शब्द गायन शब्द विचारां ते गुरमत विचारां। ता सब तो पहला आओ प्रोग्राम दा आगाज करदे हां नितनेम दी बाणी जपची साहिब दे नाल।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार चुपै चुप न होवी जे लाय रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईऐ एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै

सो कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पाल बती माई। जे हों जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, विन पाने के नाय करी। जेती सृष्ट उफाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवां खना विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे, तां वात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरै। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। ते हा कोई न सुजे, जे तिस गुण कोई करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तर तवल आकाश। सुनै दीप लोप पाताल, सुनै पोह न सकै काल।

सेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राह सुनै हाथ हुए असगाह नानक भगतां सदा विगाह सुनै दुख पाप का ना।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर।

कार जो तुद पावै साई फलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवट हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पाख खाए।

जो तुद भावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी ना

जो तुद भावै साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तन दे पानी तोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ तोए, परिये मत पापा कै संग ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ।

कौन सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोई विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी परमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती मां कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पाया का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई जां करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाणा वड्डा।

ताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिललाहे ता के अंत न पाए जाए ए अंत न जाने कोय बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोय।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने।

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूला समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीश

हत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़िए सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत नांत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव

हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार पुरानी। रागौड़ी विच पंचम पातशाह दे ए बोल साडे लई बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, साडा अध्यात्मक जीवन संवर सकदा है। हर का सिमरन सुन मन कानी, इन्ना कन्ना राही हरि दा सिमरन सुनिया कर। ए सरवणो मेरे हो साचे सुनने नू पठाए। सच की है हरि दा सिमरन ते ओ सुनिया कर, सुख पावे हर द्वार प्राणी, उस मालिक ते द्वारे ते कबूल पाएगा। लोक ता सुधर नहीं है, तेरा परलोक भाव प्रभु दा दर भी संवर जाएगा। उथे भी आओ बैठ आदर सब दियो, उथे भी तेनू सत्कार मिलेगा। ता आओ गुरु प्यारियो हरि दे सिमरन विच जुड़ना करिए, इन्ना सरवणा राही हरि जस सरवण करिए।

अंग मेरा चित्त न चले मन पयो पंग रहाओ। ए पवित्र शब्द श्रोमणी भगत रामानंद जी की रचना है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 1195 उपर राग बसंत विच दर्ज है। इस शब्द नूं सरवण करन तों पहला आपां थोड़ा जिहा भगत रामानंद जी बारे जान लईए। भगत रामानंद जी भगत कबीर जी दे समकाली ते समशहरी भगत होए ने। दोनों का आपस विच बड़ा तालमेल रहा है। भगत कबीर जी भावे उस समय कही जाती अखौती नीवी जात विचों सन, इधर भगत रामानंद जी ब्राह्मण जाति नाल संबंध रखते सन। बहुते विद्वान लोग जेड़े ने वो भगत जी नूं आम ब्राह्मण वांग ही मूर्ति पूजक अते वेदांत मानते उपाशक मानते हैं। भगत जी भावे के हमेशा पीले वस्त्र पहनते सन, ते कईआं श्रद्धालुआं ने इस तों ही भुलेखा खा लिया होगा कि वह विष्णु जी दे उपाशक सन, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी दे श्रद्धालु ही पहनते ने। इस शब्द बारे कुछ होर कहन तों पहला यह भी गल क्लीयर कर लईए कि भगत रामानंद जी का इको एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, विष्णु जी दे उपाशक सन, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी दे श्रद्धालु ही पहनते ने। इस शब्द बारे कुछ होर कहन तों पहला यह भी गल क्लीयर कर लईए कि भगत रामानंद जी का इको एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु पातशाह ने

ने होर भी काफी बाणी उचारण कीती होगी, पर इस शब्द विच जे आपां वेखिए तां भगत रामानंद जी ने हिंदू कर्म कांडां ते बड़ी चोट लगाई है। जिहड़ा ध्यान नाल शब्द नूं वाचना पैणा है, उस समय दे मौके दे धार्मिक आगुआं वल्लों जिहड़े भुलेखे पाए गए सन मूर्ति पूजा दे तीर्थ स्नान दे, इन्हां नूं दूर करन दी कोशिश कीती गई है। वो कहिंदे ने कि पूरे गुरु की शरण पिया ही साढ़े जन्मां जमंत्रां दे मंदे कर्मां दी मैल जिहड़ी है दूर हो सकती है। उन्होंने अपने शब्द विच ब्रह्म अल्फाज वरत्या है, भाव अकाल पुरख। ते कई सज्जन भगत जी दे इस इक्को एक शब्द विच यह भी गल नोट करते ने कि वो शायद ब्रह्म दे पुजारी होंगे, पर साडा मनना है कि उन्हां दी भगत कबीर जी समेत होर भी कई भगत जनां नाल सांझ बनी होएगी, ते वो जरूरी है कि बाकी भगतां दे नाल मिलके वो अध्यात्मक प्रचार करदे होण जिवें बाबा कबीर जी ने कीता है। जे उन्हां दे एक शब्द बारे सोचिए कि उन्होंने एक ही शब्द उचारिया होगा, नहीं, एक गल प्रचार दी है, आत्मक अवस्था दी है। किसी महापुरुष की आत्मक अवस्था जिहड़ी है ना, उहदा मापदंड उहदी बाणी उहदी रचना की गिनती नहीं हुंदा, क्योंकि जे इस गल नूं लवांगे तो छेवें अठवें सतवें गुरु साहिबान ने एक भी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है उन्हां दा, पर उन्हां दे समें विच जो अध्यात्मक प्रचार होया, सिक्खी दा प्रचार होया, वो बहुत ज्यादा सी। खैर, इस गल नूं लंबे करके आओ गुरमुखो सरवण करदे हां भगत रामानंद जी दे बख्शे हुए शब्द नूं, ते शब्द गायन कर रहे ने हजूरी रागी भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी। कत जाए

विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विलाही। जिन्ना जीवां नूं परमात्मा दी बंदगी तों विछोड़ा हो जांदा है उन्हां दा हाल लंबी बीमारी नाल पीड़ित रोगियां वर्गा हो जांदा है जो विलकदे ने करलाउंदे ने। तां आओ उस रब्बी जोत दे नाल जुड़न लई जिथों ये जीव आत्मा ने सुखी होना है सरवण करदे हां गुरबाणी दा एह।

अजहे संत पुरख वेखन नूं बहुत विरले विरले मिलदे ने जिन्हां कोल नाम रस दा खजाना होवे, जो इस हनेरे खूह रूपी संसार विच्चों जीवां नूं हथ दे के बचा लैण। मारू सोहले विच पंचम पातशाह जी दा उपदेश है, तिसे प्राप्त हुए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गै लीने अंधकूप ते विरले कई साल का। राग श्री राग विच गुरु नानक पातशाह जी इउं बख्शिश करदे ने कि इस्लाम मत विच बड़े बड़े शेख मशाइक काजी मुल्ला दरवेश पुरख ने, होर भी वड्डे वड्डे पीर पैगंबर औलिए धार्मिक रस्मां निभाउण वाले सियाणे समर्पित ते शहीद लोक भी ने, पर असलों दीनी बंदा तां ओही है जो उस अल्लाह उस अकाल पुरख दी बंदगी विच जुटिया रहे। पीर पैगंबर सालक साधक सुहदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद, बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद। कईयां तां मालक दे प्यारे बन लई, अपनी घर गृहस्थी छड़ दित्ती, महल माड़ियां छड़ दित्तियां, हाथी घोड़े माया दा त्याग करन दी भी कोशिश कीती, भाव के सारे सुख त्याग के ਉਹ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ, ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਦਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਅਪਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਛੋੜ ਵਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਗਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ सालक साधक छुड़ी दुनिया थाएं पए। बाबा फरीद जी अपनी बाणी विच अपने श्लोकां विच मनुख नूं समझाउंदे ने कि जिहड़ा वेला बंदगी दा है ना, वह वेला तां तूं दुनिया दे कम्मां धंदियां जां कर्मकांडां विच गवा लिया, हुण मौत वाली खाई जिहनूं कबर कह दिंदे आ वह इन्नी डूंगी पुट लई है ते तेरे कोलों अपने उपर पिया होया भार उठाया नहीं जाना। फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों, जदों समा सी ना नाम दी कमाई करन दा वेला सी, उदों तां तू दुनिया दे कम्मां कारां विच लगा रहा, मर्ग सवाई नहीं जां भरिया तां लद्दिया, जदों इस कबर रूपी नीह विच जा डिगा ते तेरे उपर मिट्टी दा भार पिया, ते तू लद्दिया होया तू इस मिट्टी विच्चों नहीं निकल सकेंगा। गुरु नानक पातशाह सलोक वारां ते वधीक विच जो फरमान करदे ने उह साडे जीवन ते इन बिन टुकदा है, ते इन्हां सलोकां विच्चों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1410 उपर दर्ज है गुरु पातशाह दे पंजवें सलोक की टेक, जिसनू शब्द कीर्तन के रूप विच गा रहे ने हजूरी रागी भाई निर्मल सिंह खालसा। इस शब्द की टेक है, नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित्र न रहो कोई, भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया।

0: ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਰਥਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਿਰਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ
1: सब तो बुद्धिमान होने के बावजूद भी ये मनुख अपनी आत्मक अवस्था नु पता नहीं क्यों नहीं समझता। जो आत्मक तौर ते सुत्ता पिया है उसनु कहिंदा है जाग रहा है, जो आत्मक तौर ते जाग पिया मनुख उसनु कहिंदा है सुत्ता पिया है। होर ता होर जिसने जीवन दी रमज समझ ली उस बारे कहिंदे ते मरिया वांग है, ते जो आत्मक पक्षों मरिया पिया है उस बारे इसनों कोई रोना धोना नहीं। ये ता रब दे घर वल्लों आ रहे जीव नूं जांदा होया दर्शा रहा है, ते उस दे घरों जा रहे जीव नूं आ रहा भाव जन्म दे रहा कह रहा है। पराई इमानत ते लपटदा है ते अपनी भी गवा बैठता है। गौड़ी राग विच गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मूवा कहे मूवे नहीं रोता, आवत को जाता कहे जाते को आया, पर की को अपनी कहे अपनों नहीं पाया। इस मनुख दे हिरदे विच वडमुले हीरे मोती पए हुए ने, पर ए सब कुछ बार जंगला पहाड़ा तीर्था दरियावां दे भालदा फिरदा है। नाम रस छड़ के दुनिया दे होश भुलाउण वाले रसा विच आनंद पालदा है, पर सतगुरु कहिंदे हर रस छोड़ होसे रस माता, अमृत इसनु कौड़ा लगता है ते बिख्या मिठी लगती है। अमृत कौड़ा बिख्या मीठी, हर रस छोड़ होसे रस माता, घर में वस्त बार उठ जाता। भाई गुरदास जी बचन करते ने कि असलों मनुख नु पता ही नहीं कि यह मानस जन्म बड़े वड्डे भागा नाल मिलिया है। वह भी 84 लाख जोना भुगतन तो बाद, गुरु प्यारियो कहना बड़ा सौखा है 84 लाख, जे हर एक जून की उम्र सिर्फ 1 साल भी गिनी है ना ते तावी 84 लाख वरे बन जाते ने। ते तुसी जानते हो कि कई जूना कई कई 100 साल जूंदिया ने, ते असी अपना उत्तम जन्म भंग दे पहाड़े गवा रहे हां। 84 लाख जून फिर फराया मानस जन्म दलम करमी पाया। हां जे श्रोमणी भगत भगत रविदास जी दे राग तनासी विच कहे हुए बचन साडी समझ विच आ जावन ते साडे हिरदियां विच कुछ अजिही हूक होनी चाहीदी सी, बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लिखे, कहे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। ता आओ भाई साहब भाई अमरीक सिंह जखमी दे रसना राही इन्हां पवित्र बोलां दा आनंद माणिए।

आस बवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकर पए एका। राग सारंग दी बाणी विच पंचम पातशाह दे ए पवित्र बोल। जदों गुरु दे नाल गुरबाणी दे नाल जुड़न दा मौका मिले तां साडे अंदरों अग्ञानता दा हनेरा दूर हुंदा है। जय ज्ञान प्रकाश अज्ञान मेटंत। मन निर्मल हो जांदा है, हिरदे दे विच विकास हुंदा है, बुद्धि आ जांदी है, विवेक आ जांदी है, चंगे माड़े दी पहचान हो जांदी है। ए ओ अवस्था है जिवें समुंदर दीआं लहरां उठदीआं ना, बड़ी झग बनदी है ते जदों ओ फिर लहरां समुंदर विच लीन हो जाण ओ झग मिट जांदी है। इवें जदों ए जीव आत्मा लहरां वांग उपर उठदी है ते ए झगो झग हो जांदी है, पर जदों अंदर समा जावे समुंदर दे अंदर अकाल पुरख दे अंदर समा जावे तां ओदा रूप हो जांदी है। फिर ए पता नहीं लगदा सेवक ठाकर पए एका कि कौन सेवक है कौन ठाकर है। सेवक ते ठाकर भाव अकाल पुरख ते जीव आत्मा एक मिक नजर आउंदे ने। आओ अपनी इस जीव आत्मा नूं अकाल पुरख नाल अभेद करिए। सरण करदे हां यह पवित्र।

0: तुरकी बाणी आए तिन सगली चिंत मिटाए। तुरकी बाणी सानू गुरु साहिबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हां तां साडियां गुरु साहिबान नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहिबान नाल गल्लां करन दा इक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
1: तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे इन्हां रब्बी बोलां विच जो संदेश मिलदा है तां आओ तुरकी बाणी नूं शब्द कीर्तन दे रूप विच सरवण करदे हां।

अज पार ब्रह्म नंकार, एक साचे नाम बाजो सगल दिसार। रागासा विचों धन गुरु अर्जुन देव पातशाह दे ए पवित्र बचन के जे तू अपनियां सियाणपां छड के, क्योंकि मनुख दियां सियाणपां किसे लेखे विच नहीं हन, सहज सियाणपां लख होए ता इक न चले नाल, तू अपनियां सियाणपां छड दे, सिर्फ परमात्मा दी बंदगी लग कर। भज पार ब्रह्म निरंकार, एक साचे नाम बाजो। सियाणपां नाल असी दुनियावी पदार्थ लोचदे हां, ते सच्चे पातशाह कहिंदे जे नाम नहीं ना तेरे पल्ले, सगल दिसै शार। ए जिन्ने भी दुनियावी पदार्थ जो मालिक दे रहा है, ए शार भाव सुभा रूप ने, इन्हां दा कोई मुल नहीं है। जे नाम है ते संसार दे पदार्थां दे विच विचरना, संसार विचों उन्हां नाल मेल जोल रखना, वह सब कुछ सफल है। पर जे नाम पल्ले नहीं है ता तेरा इस संसार दे विच आउना, संसार दे जीवां नाल विचरना सब अजाई है। ता आओ उस सच्चे मालिक कोलों नाम दी दात मंगिए। ए शब्द राही उस अकाल पुरख दे चरना नाल अपनी प्रीति जोड़ी।

0: विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।
1: आदि पूरन परमात्मा आदि समय तो है, मद पूरन परमात्मा हुण भी है, पूरन है, अंत पूरन परमेश्वर है। संस्कृति विच रचिया इस श्लोक जैसी दीवार दा पहला श्लोक है। तो सतगुरु कहिंदे उस संसार दे अंत विच भी पूरन होएगा और उस परमात्मा दी बंदगी करके उदा नाम सिमर सिमर के संत जन गुरमुख जीव तरदे ने। सिमरंत संत सरबत रमनंग नानक अगनासन जगदीशर है। गुरबाणी दे इस अथा समुंदर दे विच ए जो पवित्र श्लोक 705 अंग उपर दर्ज है। कई बार कई जीव जा पाठी सिंह इस नू गुरबाणी दे मध दा श्लोक गिन लैंदे ने, पर असलों ए परमात्मा दे बारे वर्णन है कि उह सदा पूर्ण है। इस करके उस परमात्मा दी पूर्णता जो वर्णन है सतगुरां ने इस श्लोक राही कीता है। आपां भी इन्हां वहमां भरमां तों बाहर आके उस पूर्ण परमात्मा दे आओ गुण गायन

जिस मनुख ने अकाल पुरख के सही स्वरूप नू समझ लिया होवे उस नू वो मालिक अकाल पुरख अंग संग वसदा दिसदा है। जिवें सियाणे कहिंदे ने कि मिछली दे शरबत दा स्वाद उही दस सकदा है जिसने एक स्वाद चखिया होवे। निवरै दूर दूर हुन निवरै जिन जैसा कर मानिया औलौती का जैसे पया बरेडा जिन पिया तिन जानिया। औलौती कहिंदे मिश्री नूं। कबीर जी दा इत्थों तक कथन है कि गूंगे बंदे नूं मठियाई दा स्वाद पुछो तां उह जिवें इशारे नाल ही समझा सकदा है, बोल कुछ नहीं सकदा। इवें रब्बी चरणां विच जुड़न वालियां रूहां दा इह जिहड़ा आनंद अवस्था है वो वर्णन नहीं कर सकदियां। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। कहन सुन दी वार्ता चली ते रब दा नाम कहन ते सुन वाले दोवे पवित्र ने। सुनते पुनीत कहते पवित्र। गुरु अमरदास जी अपनी बाणी विच इसकी शादी भरदे ने। आओ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीमी हर रस गुरते पाया मेरे मन तन लीनी। गुरु दी शरण पैके ही हरि दा नाम जपना होरना नू नाम जपाउणा इहो दुखां दलिद्रां तों सानू बचाउंदा है। गुरमुख हर पढ़िया गुरमुख हर सुनिया हर जपत सुनत दुख जाए। धन गुरु नानक देव पातशाह तां कहिंदे ने कि असीं इक दम दे मालक हां। आदमी तां इक दम ही है तां फिर कोई दम व्यर्थ क्यों जावे। असीं बहुत सारे सवास अजाई गवा लैंदे हां तां जदों गुरु दे शब्द दी सोझी हो जावे तां उदों ही हुण सिमरन विच जुड़ जाइए। ता आओ जी इस उपरोक्त दृष्टांत नूं दर्शाउण लई राग तनासी विचों गुरु नानक पातशाह दा बख्शिश कीता होया एक शब्द सरवण करदे हां। शब्द सरवण करवा रहे ने भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले। शब्द दी टेक है हम आदमी हां इकदमी

0: आप जी वडभागे हो जो रोजाना अमृत वेले हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया राही गुरबाणी अति गुरमत विचारां दी शहबर विच करीब तीन घंटे गुड़ुच हुंदे हो। गुरबाणी साडे जीवन दा आधार ते उधार है। मनुख मात्र लई गुरबाणी गाड़ी राह है। साडी अकाल पुरख मालक अगे दोवें हथ जोड़ के बेनती है कि आप सब स्रोतियां दा अज दा ए शुभ दिहाड़ा गुरमत दी सोझी दे नाल नाल खुशियां खेड़े लेके आवे। इसे शुभ भावना दे नाल अरदास करदियां मैं दलजीत सिंह आप जी कोलों प्रोग्राम दी समाप्ति दी इजाजत चाहुंदा हां। उस मालिक ने चाहिया तां कल सवेरे अमृत वेले आवाज दी दुनिया राही आप जी नाल फिर तो सांझ पावांगे। रब राखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। आजो ताया जी वेलकम।
2: ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू।
1: ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे।
2: लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो।
1: पंजाबी फर्नीचर?
2: जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर। जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटो चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी
1: लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा।
2: लिखो फिर 21130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: रोटी हजम नहीं हुंदी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डू वाली स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
4: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
0: दुनिया भर दे सारे मुकद्दस स्थानां विचों श्री दरबार साहिब अमृतसर इक विलक्खण थां रखदा है जिसका जिक्र करदियां वड्डे वड्डे ग्रंथ रचे जा सकते ने। गल भाई गुरदास जी दे बोलां तो शुरू करदे आ तो भाई साहब कहिंदे ने पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुंदर समावै। अमृतसर दा शाब्दिक अर्थ है अमृत दा सरोवर। अमृत सरोवर तो इस पवित्र शहर का नाम ही अमृतसर साहिब पै गया। जो धन गुरु अमरदास जी के हुक्म चौथी पातशाही धन गुरु रामदास जी ने यह पवित्र शहर वसाया तो उस तो इसका नाम से गुरु का चक। बाद इस शहर नू रामदासपुर करके कहना शुरू हो गया। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां नानक संभल जाए नायसी रामदास सर। जा फिर राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज रामदासपुर कीनी गुरुदेव। जिवें कि आपां पहला गल कर चुके हां कि अमृत सरोवर दे बाद विच दरबार साहिब दी संस्थापना हुई ते इह शहर बन गया अमृतसर साहिब। सिखां दी बहुत ही पवित्र भावनावां इस नगर नाल खास करके दरबार साहब नाल जुड़िया हुई ने। सिख सेवक भावे किसी देश किसी विदेश विच वसदा होवे उसके दिल विच इस पवित्र स्थान दे दर्शन इशनान दी तांग सदा बनी रहिंदी है। यह हुण नहीं जदों अबदाली जां होर हाकमां ने अमृत सरोवर पूरन तक दियां गल्लां कीतियां पाबंदियां लाईयां उदों भी सिख जिहड़े सन गाहे बगाहे जान ते खेड के गुरु घर दे विच हाजरी भरदे सरोवर च टुब्बी लाउंदे ते गुरबाणी सरवण करदे। शायद इन्हां पाबंदियां करके ही ये अल्फाज साडी अरदास विच जुड़ गए होण। श्री अमृतसर जी के इशनान। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1361 तो लैके 1363 तक धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी बाणी है फुने ते इन्हां विच्चों दसवें फुने विच मनुख दे अंदर जो अकाल पुरख ने हर मंदर साजिया है उस बारे जिक्र है। हर मंदर हर साजिया उस मालिक ने साडे अंदर भी एक हर मंदर बनाया है ते उस दी उस्तत करदे आ पातशाह कहिंदे ने कि दुनिया दे बड़े सुंदर तो सुंदर स्थान होणगे पर हरी दे मंदर वर्गा कोई स्थान विधाती ने होर बनाया ही नहीं क्योंकि उहदा अपना घर है। इस नगर विच सत संगियां दा ठहराओ एडा सोहना लगदा है। ऐसे जो स्थान ने ऐसे नगर ने उत्थे सतसंगी ठहरदे ने ते इस ते अमृत जल विच टुब्बियां लाउंदे ने अपने पाप धोंदे ने ते आओ आपां वी हजूरी रागी भाई रविंदर सिंह जी दे नाल नाल शब्द कीर्तन सरवण करदे हां ते इन्हां बोलां नूं आओ अपने मन विच गुणगुणाईए ते इस अमृत सरोवर विच टुब्बी लाईए ताकि साडे वी पाप कसम्मल भन्ने जान। शब्द है डिठै सबे थाव नहीं तुद जेहा बदो पुरख बिदाते ता तू सोहया।

0: खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत, सूरज दियां सुनहरी किरणां रुमक दी पौण, आसमानी चादर दे थले लहलहाउंदियां फसलां दे नाल लहरां लहरां तुहाडी सवेर नूं होर निखारन लई पेश है प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां लहरां लहरां तुहाडे मन दे वलवलियां दियां लहरां तुहाडे वडमुल्ले विचारां दियां लहरां तुहाडे दिल दे जज्बातां दियां वखरा दिन वखरी आवाज वखरी गिरां सोमवार तो शुक्रवार सिडनी आस्ट्रेलिया समय दे मुताबिक सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक लहरां
1: Keep on track.

हरमन रेडियो ते सवेरे 8 बजे प्रसारित होने वाले गीत संगीत नाल भरपूर लहरां प्रोग्राम विच हल्कियां फुल्कियां ते जानकारी भरपूर गल्लां भी करया करांगे अते विचार भी सुनया करांगे। इस प्रोग्राम विच तुसी सानू फोन करके अपने विचार साडे नाल सांझे कर सकदे हो। अपनी गल्लबात सुनेगी पूरी दुनिया। सुनते रहो हरमन रेडियो प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां लहरां लहरां सोमवार तो शुक्रवार तक रोजाना।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा रख प रखा पत।
1: इस दा भाव है कि जे तुसी चाहुंदे हो कि लो

सरगश्तगी करते हुए सवेर दी ताजगी सन ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालवन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

रेडियो 24 घंटे 7 दिन। पेत बारे अमरीका दी कहावत है कि हर घर च एक काली पेड़ जरूर हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

रीती रिवाज बारे सियाने कहंदे हन कि रीती रिवाज अते कानून दो भैणां वांग हुंदे हन। विद्या विचारी तां पर उपकारी।

मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इस लिए असि लेके आने थोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबर का सिलसिला। देश ते विदेश दिया खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल

0: 24/7.
1: एक डच कहावत है, बंदे दी सियाणप अते औरत दा सबर मिलके घर च सुख ते शांति पैदा करदे हन। अते कोरिया वाले कहंदे हन, खुशियां वाले घर दे विच बैंगण दे बूटे नूं भी खरबूजे लगदे हन। संसार प्रसिद्ध मुहावरे परमिंदर सोढी सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

जेड़ा भोजन खाण दी मजबूरी होवे ओ बेस्वादा हो जांदा है, जेड़ी किताब पढ़न दी मजबूरी होवे ओ नीरस हो जांदी है। बेस्वादी जां नीरसता भोजन जां किताब विच नहीं हुंदी, मजबूरी विच हुंदी है। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: सलाह बारे फिलिपीन दी कहावत है कि जेड़ा सलाह मशवरे करदा रहे ओ गलती कट ही करदा है। विद्या विचारिता पर उपकारी।

0: अरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन
2: अखा ने ना खादा ता मुंह ने की खाना है। जदों कोई भोजन जा चीज वेखण नू चंगी ना लगे ता उस नू खान नू जी नहीं करदा।

0: मुहावे अते अखान साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हसने घर वसने
1: इसका मतलब है कि हसदे खेड़दे दे खिड़े मत्थे रहण वाले सदा सुखी हुंदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग
1: तूफान विच तास दा घर नहीं बनदा रोण नाल विकड़िया मुकद्दर नहीं बनदा दुनिया नूं जित्तण दा हौसला रखो एक हार नाल कोई फकीर अते एक जित नाल कोई सिकंदर नहीं बनदा चंगे विचारां नाल सुणदे रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी।

की वापर रहा है। हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला कर रहा है।

0: आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सैक्शन विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
4: हरमन रेडियो
5: तो हाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे गीत सुनावांगे। हरमन

इतिहास बारे कलिंगोन अनुसार इतिहास जेतुआं दा लिखिया हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा सप्पा दे पुत्तर कदे मित्र नहीं हुंदे।
1: इस दा मतलब है कि वैरियां दी औलाद भी वैर कमाणों नहीं टलदी, उना ते इतबार नहीं करना चाहिदा।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: सत श्री अकाल जी। ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली ऐप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

जे असी अपने विरोधियां दे बोलन दी आजादी विच यकीन नहीं रखदे तां समझो असी बोलन दी आजादी विच मूलों ही यकीन नहीं रखदे। नोम समस्की। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: दोबारा इश्क होया तो तेरे नाल ही होवेगा। खफा जरूर हाँ पर बेवफा नहीं। एहो जिया होर सोहनिया रचनावां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

0: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गों ते भाभीओ देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबीओ प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियो झगड़े छड़ के दो मिनट हसो
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
3: प्यारी साध संग जीओ अज असी एक महान नेता श्री टिड्डू राम जी बिच्छू दी अंतम अरदास विच कठे होए हां बेशक गर्मी बहुत पै रही है बिजली दा भी कोई इंतजाम नहीं पक्खे भी बंद पए हन पानी दा भी कोई प्रबंध नहीं मुड़के दी बदबू नाल साह घुटदा जा रहा है ए सब कुछ विरोधी सरकार दे होण करके हो रहा है जेकर साडी सरकार हुंदी तां असी ए त्रुटियां नहीं आण दंदे सी फिर भी असी तुहाडा ज्यादा समा नहीं लैंदे सिर्फ 5-7 घंटे आराम नाल बैठे रहो साडे कुल 200 नेता उन्हां दी जीवनी बारे जरूर चानना पाउणगे सब तो पहला मैं श्री चानण राम जी नेहरा नू बेनती करदा कि ओ अपने विचार जनता दे सामने आके रखण प्यारी साध संग जी ए दा तुहानू पता ही है के श्री टिड्डू राम जी बिच्छू नू कौन नहीं जानदा
4: जेडी ओदे डंगे वे ओ किवें भुल्लणगे
3: ए वी सारा इलाका जानदा के श्री बिच्छू जी एक महान नेता सी
4: आए कह महान गुंडा सी
3: ए वी गल सारे इलाके नू पता के श्री बिच्छू जी हाई करैक्टर दे बंदे सन
4: ताही पिंड चो मुंह कहा करके कड्या सी ना
3: सो पंडाल विच 71 होए दोस्तो आपा सारयां नू एदे पाए पूरनियां ते चलना चाहिंदा
4: आहो ओ चोरी करदा सी ते आपा डाके मारो
3: प्यारी साध संग जी ए तां तुहानू पता ही है के इन्हां ने सारी जिंदगी नशा दे विरुद्ध प्रचार कीता
4: आप सवा नहीं छड़दा सी
3: श्री बिच्छू जी कदे भी एक पार्टी च बजा नहीं रहा ओह सब पार्टियां दा सांझा बंदा सी
4: सारियां पार्टियां च छत्र खा के निकलिया सी
3: श्री बिच्छू जी हमेशा लोकां दी सेवा च लगे रहंदे सन इन्हां नू घर विच रहण दा घट ही मौका मिलदा सी
4: घरे कोई वड़नी नहीं दिंदा सी इहनू
3: ए गल तां किसे तों भी छुपी नहीं ए श्री बिच्छू जी बहुत उच्चे आचरण वाले बंदे सन
4: ताही पुलिस तों 20 बारां छित्तर खादे सी ना
3: इन्हां नू चंगे बंदे तां सारे प्यार करदे ही सी इत्थों तक के चोर चक्के भी प्यार करदे सन
4: ते क्यों ना करन सारयां दा उस्ताद जो सी
3: श्री बिच्छू जी ने अपने सारे सुख त्याग के हमेशा सांझे परिवार दा प्रचार कीता
4: आप पंज नूहां दे हुंदे आप पका के खांदा सी
3: बिच्छू जी नू इलाके दे लोकां ने बहुत वारी चोन लड़न लई बेनती कीती पर इन्हां ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई
4: शर्म नहीं आउंदी 10-12 ते जबान ते जब्त हो गई सी इहदी
3: इन्हां ने पिंड दी तरक्की लई बहुत मेहनत कीती सारे सांझे कम अगे लग के संभारे
4: क्यों ना संभारे पिंड दी शाम लाट ते सिवे बेच के खा गए
3: एहो जही महान शख्सियत दी सारे मुल्क नू लोड है सो एहो जो है बंदे हरेक पिंड पिंड विच जमने चाहिदे ने
4: रब करके कारू जम्मे देश दा बेड़ा गर्क करना है
3: ए गल तां सारे इलाके विच किसे तो छुपी नहीं सी ए श्री बिच्छू जी ने पिंड दी इज्जत नू चार चन लाए
4: देखा पिंड दी कुड़ी कट के ले गया सी
3: जेड़े बंदे नसीले पदार्थ बेचदे सन श्री बिच्छू जी उन्हां तो नफरत करदे सी ते सदा ही उन्हां दे खिलाफ सन
4: आप बिना मुंह ही खांदा सी देख
3: श्री बिच्छू जी हमेशा हरेक नू निमके मिलदे सी अते बहुत ही निघे अते मिठे सुभा दे बंदे सन
4: कदे पीती च नहीं मिलिया होना तेनू
3: इना दा हमेशा यही प्रचार रहा के तीवी आदमी नू हमेशा प्यार नाल रहना चाहिंदा
4: ते आपदी तीवी नू 20 वारा कुट्टिया सी इहने
3: श्री बिच्छू जी ने हमेशा यही सिख्या दित्ती के नूहां नू तियां बराबर समझो
4: आप नूह तों दाढ़ी पटाई सी इहने
3: श्री बिच्छू जी दी जिंदगी दी सब तों खूबसूरत गल ए सी के ओह हमेशा ਦਾਜ ਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ
4: ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਚਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹਨੂੰ
3: ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਛੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
4: ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ
3: ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਡੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਛੂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ
4: ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੋਲਕ ਤੋੜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ
3: ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਛੂ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਮ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ
4: ਦੂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੀ
3: ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪੈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ
4: ਆਹੋ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ
5: ਹਾਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24/7
6: ਬਹਾਨੇ ਵਾਰੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ

श्रीकाल जी। मैं हां अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया के हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़ते हैं, आला दर्जे की पेशकारी का आनंद माणते हैं। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रेजेंटर मुफ्त सेवा निभाते हैं। तुसी भी साडी मदद कर सकते हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।